ये आकाशवाणी है FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और भक्ति संगीत वंदना का समय रहेगा सुबह 9:20 पर। श्रोताओं, सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिले के अंतर्गत देश प्रदेश तथा नागौर जिले में कबड्डी सहित अन्य खेलों और खिलाड़ियों की दशा और दिशा विषय पर जिला खेल अधिकारी

नागौर श्री सोहनलाल गोदारा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10 बजे और गाने नए तराने नए फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 10:30 पर। युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5 बजे और कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का और कार्यक्रम माटी के स्वर का समय रहेगा शाम 6:20। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी समय रहेगा शाम 7 बजे और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग समय रहेगा शाम 7:30 पर। श्रोताओं, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गजलें और कव्वालियां, गाने नए जमाने के फिल्म संगीत रात्रि 8:30। सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 9 बजे और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM एंड 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर, जोधपुर और कोटा में महापौर तथा सुकेत में नगरपालिका अध्यक्ष के लिए आज मतदान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जयपुर दौरे पर, दादिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित 3 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त किए। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज से 3 दिन का आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम और अनंत चतुर्दशी पर आज गणपति विसर्जन के साथ 10 दिन से चल रहा गणेशोत्सव संपन्न होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। नगरीय निकाय चुनावों के तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के महापौर तथा कोटा जिले की सुकेत नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी। जयपुर में भाजपा के सुनील कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर आमने सामने हैं। वहीं जोधपुर में भाजपा के प्रसन्न चंद मेहता और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी तथा कोटा में भाजपा की अनुसुईया गोस्वामी और कांग्रेस की सुनीता सुमन महापौर पद के लिए प्रत्याशी हैं। महापौर और अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद कल जयपुर, जोधपुर और कोटा में उप महापौर तथा सुकेत में उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया जाएगा। राजधानी जयपुर में आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अपने शहर को साफ रखने में हर नागरिक को योगदान देना चाहिए।
1: जैसे कोई भी बाहर से आता है, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, चाहे टूरिज्म के लिए आता है, सब लोग सबसे पहले क्लीनलीनेस देखते हैं, स्वच्छता देखते हैं किसी भी शहर की। तो इसमें अगर हम लोग भी तो नागरिक हैं। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का काम नहीं है, उनका तो है ही, लेकिन एक नागरिक का भी कर्तव्य है कि हम हमारे शहर को हमारे

0: सारस्वत को कुलगुरु नियुक्त किया है। वहीं सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में डॉक्टर युद्धवीर सिंह तथा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नरसिंहराम विश्नोई को कुलगुरु बनाया गया है। ये नियुक्तियां राज्य सरकार के परामर्श से की गई हैं। तीनों का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा। प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 के तहत ऐसे पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ के दायरे में लाने का अवसर दिया जा रहा है जो संस्थान में कार्यरत होने के बावजूद अब तक भविष्य निधि का सदस्य नहीं बन पाए हैं। ये जानकारी ईपीएफओ के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और राजस्थान प्रभारी अजीत कुमार ने जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच नियुक्त और वर्तमान में सेवा में कार्यरत पात्र कर्मचारी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज से 3 दिन का आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि ये आयोजन विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य जनसेवा, सामाजिक सरोकार और पोषण तथा स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संस्था प्रधानों से कार्यक्रम में जनभागी की अपील की है। राज्य के 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों का सघन तकनीकी सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे में 3,587 जर्जर स्कूल भवनों और करीब 71,000 कक्षों में सुधार के लिए चिन्हित किए गए हैं। स्कूल भवनों के पुनरुद्धार और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर लगभग 12,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी जयपुर में राज उन्नति की 9वीं बैठक में स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा के दौरान दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सभी कार्य तय समय में और पूरी गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत करीब 46 लाख विद्यार्थियों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण दूध उपलब्ध कराने को कहा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि इसे डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उत्पाद उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित नहीं किया जा सके। प्रदेश भर में अनंत चतुर्दशी आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। सभी जगहों पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जा रही है। साथ ही लोग कथा का वाचन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसी के साथ 10 दिन का गणेश उत्सव आज संपन्न हो रहा है। विभिन्न स्थानों पर गाजे बाजे के साथ गणपति विसर्जन किया जाएगा। कोटा में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 200 से अधिक मनमोहक झांकियां शामिल होंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता।
1: अनंत चतुर्दशी शोभा यात्रा के लिए कोटा शहर पूरी तरह सज धज के तैयार है। आज 11:30 बजे सूरज पोल गेट से निकलने वाली इस भव्य शोभा यात्रा में 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। इस बार जुलूस में 90 अखाड़े, 200 झांकियां और केरल की पारंपरिक मार्शल आर्ट कलरी मुख्य आकर्षण रहेंगे। 5 किलोमीटर लंबे जुलूस मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए 150 स्वागत समितियां बनाई गई हैं। सुरक्षा के लिए 350 से अधिक स्वयंसेवक मुस्तैद रहेंगे। वहीं गणपति विसर्जन के लिए बाहरदरी, भीतरिया कुंड और मोजी बाबा की गुफा में अस्थायी कुंड भी बनाए गए हैं। बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु क्रेन और नगर निगम की गाड़ियां तैनात की गई हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: पाली में सिरे घाट पर गणेश प्रतिमाएं विसर्जन के लिए पहुंच रही हैं। इसे देखते हुए विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल से पितृ पक्ष शुरू होंगे। तिथि क्षय के कारण इस बार पितृ पक्ष 15 दिनों

0: का होगा। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से पितरों का स्मरण किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि अवैध खनन, बजरी परिवहन और भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये बात करौली में आयोजित उच्च स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक में कही। श्री शर्मा ने संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अगले 3 महीने में 1 वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने को कहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर, जोधपुर और कोटा में महापौर तथा सुकेत में नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जयपुर दौरे पर, दादिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित 3 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त किए। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज से 3 दिन का आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम और अनंत चतुर्दशी पर आज गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 10 दिन से चल रहा गणेशोत्सव सम्पन्न होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थी कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत वंदना।
1: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत वंदना FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत देश प्रदेश तथा नागौर जिले में कबड्डी सहित अन्य खेलों और खिलाड़ियों की दशा और दिशा विषय पर जिला खेल अधिकारी नागौर श्री सोहन लाल गोदारा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं नागौर के जिला खेल अधिकारी और कबड्डी कोच श्री सोहन लाल गोदारा से, और इनसे हम बातचीत करेंगे खेल की जो स्थिति है, दशा और दिशा है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो, प्रादेशिक स्तर पर हो और जिला स्तर पर हो, क्या कुछ खेल के बारे में होना चाहिए, खेलों के बारे में और खिलाड़ियों के बारे में कितना हमारी सरकार सोच रही है और क्या उसके लिए प्रयास हो रहे हैं, खेलों में जो हमारी स्थिति है उसको और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, सभी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। गोदारा साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: गोयल साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने हमें याद किया।
1: जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कबड्डी कोच हैं
2: जी,
1: तो सबसे पहले हम कबड्डी की ही बात करते हैं। तो कबड्डी हमारा यहाँ का, मतलब हिंदुस्तान का, भारत का हमारा अपना खेल है। तो इस कबड्डी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं, जिला स्तर पर आप क्या प्रयास कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो स्पर्धाओं में कबड्डी की जो स्थिति है, यह कबड्डी को शामिल किया जाए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में, उसके लिए क्या कुछ किया गया है और किया जा रहा है?
2: वर्तमान में एशियाड में कबड्डी खेला जाता है, एशियन गेम्स में कबड्डी खेला जाता है
1: जी,
2: और कॉमनवेल्थ जो 2029-30 में आयोजित होने जा रहे हैं और उसके लिए भारत ने प्रबल दावेदारी प्रस्तुत की है, उसमें भी भारत की ओर से जो खेल है वो कबड्डी
1: को शामिल किया जाने
2: के लिए
1: जी, उसके लिए प्रयास किए
2: जा रहे हैं। उसी के साथ 2036 ओलंपिक के लिए भी भारत ने अपनी दावेदारी रखी है। उसमें भी भारत का एक ये कि हमें आयोजन के साथ ओलंपिक के अंदर कबड्डी खेल शामिल किया जाए
1: जी।
2: पिछले ओलंपिक में भी एक ट्रायल गेम रखा गया था, क्योंकि कबड्डी 3-4 महाद्वीपों में तो बहुत अच्छे ढंग से खेला जा रहा है, लेकिन ओलंपिक में लाने के लिए प्रत्येक महाद्वीप की पार्टिसिपेशन, उसकी सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत का जो AKFI अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, लगातार प्रयास कर रहा है कि इधर जैसे अफ्रीकन देश है या अमरीका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर भी कबड्डी के मैचेजों का आयोजन हो और प्रो कबड्डी के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया जाए और ग्रास रूट पे भारत में भी छोटी छोटी अकादमियों के माध्यम से कबड्डी गांव गांव तक पहुंचे, उसके लिए इस साल
1: जी
2: भारत सरकार और कुछ खेल प्रेमी मिलकर एक सघन अभियान चला रहे हैं कि एक ऐसा दिन हो जिस दिन संपूर्ण भारत के सभी गांवों में, क्लबों में एक साथ एक इतने बड़े कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हो जो गिनीज बुक में दर्ज हो
1: जी। यानी कि कुल मिलाकर कबड्डी को लोकप्रिय बनाया जाए और जो जिन देशों में कबड्डी नहीं खेली जा रही है, उन जिन महाद्वीपों में नहीं खेली जा रही, वहां भी कबड्डी की शुरुआत की जाए, इसका प्रचार प्रसार हो। तो जाहिर है कि जो हम चाहते हैं कि कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में, ओलंपिक में शामिल किया जाए, तो वो संभव हो सके। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से इससे भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि कबड्डी में जो हमारे पदक जीतने की दावेदारी है वो बहुत मजबूत होगी, क्योंकि तो हमारा अपना खेल है। तो कई देशों के जो खेल हैं वो शामिल हैं, लेकिन हमारा एक खेल जो शामिल नहीं है, इसकी वजह से हम पदक में पिछड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल किया जाए। हम जिला स्तर पर बात करें, आपके खेल अधिकारी चूंकि आप हैं नागौर के, तो जिला स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए और अन्य जो खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
2: नागौर स्टेडियम में वर्तमान में कबड्डी का इंडोर हॉल, जिसके अंदर 3 कबड्डी मैट्स लग सके
1: जी,
2: इतना शानदार, लगभग 5.5 करोड़ का बनकर तैयार है, जिसमें बच्चे बच्चियां अभ्यास करते हैं। आउटडोर के 4 मैदान हैं, जिसमें फ्लड लाइट भी है, वाटरिंग की अच्छी फैसिलिटी है, चेंजिंग रूम है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं
1: जी,
2: अच्छा जिम हॉल है, और अभी सिंथेटिक्स 400 मीटर के ट्रैक के लिए टेंडर हो रहे हैं और जल्दी बनकर तैयार होगा, और 1250-1300 मीटर का एक फाटलेक ट्रैक जो स्टेडियम की 4 दीवारी के आसपास जो बन रहा है
1: जी,
2: वो बन के तैयार है, जिसमें एथलीट अपना अच्छा अभ्यास करते हैं। स्टेडियम के अंदर 2 वॉलीबॉल के अच्छे कोर्ट, आउटडोर कोर्ट, जिसमें फ्लड लाइट है, दो बास्केटबॉल के कोर्ट बनकर तैयार है, 11 क्रिकेट के पिच बनकर तैयार है जिसमें खिलाड़ी प्रयास करते हैं, हॉकी का मैदान है, ग्रासी मैदान 170x130 मीटर का बनकर तैयार हो रहा है जिसके चारों ओर फेंसिंग होगी, और एक यूथ हॉस्टल जिसके अंदर लगभग 100 बच्चे रह सकते हों, ऐसा आवासीय बिल्कुल पूरा वातानुकूलित वेल मैनेज्ड है, एक बैडमिंटन हॉल है जिसके अंदर 2 कोर्ट बन रहे हैं, कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है
1: जी। इसका मतलब सरकार की ओर से पूरा सहयोग आर्थिक तौर पर किया जा रहा है कि खेलों को और खेलों से संबंधित सुविधाओं को किस प्रकार से खिलाड़ियों तक उपलब्ध कराया जाए उसके लिए
2: बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं जी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, वर्तमान में इस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब बच्चे गांव से पलायन करके शहर के आते हैं, शहर में वो बच्चे आते हैं जिनके माता पिता जागरूक है, अब उस बच्चे में टैलेंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वास्तविक टैलेंट या तो गरीबी के कारण दब जाता है या उसको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी आवासीय अकादमियां ग्रास रूट पे जिसमें बच्चों का टैलेंट सर्च करके, जिसमें किसी पर्टिकुलर गेम से कोई लेना देना नहीं है, 13-14 साल के वो बच्चे जो अच्छे फिट हैं
1: जी,
2: जो 5 गामक योग्यताएं हैं उनके टेस्ट लेकर उनको लगभग 1 साल या अच्छा वर्कआउट करवाने के बाद, फिर उनका 1 साल या 1.5 साल 2 साल बाद जब लगे कि अच्छे फिजिकली फिट हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, उनको तो हायर जो सेंटर है उन पे भेजा जाए, और बाकी लगता है कि ये ले तो लिए लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको वहां से वापस अपने घर भेजा जाए
1: जी।
2: ऐसी व्यवस्थाएं हो तो भारत ओलंपिक की पदक
1: जो पोटेंशियल है, जिनमें पोटेंशियल जो बच्चे हैं जिनको कि आगे बढ़ाया जाए तो वो कुछ नाम कर सकते हैं हमारे प्रदेश का देश का, तो ऐसे बच्चों पर राशि भी खर्च की जाए और उन पर मेहनत भी की।
2: अभी बेशक भारत सरकार और राजस्थान सरकार खेलों पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, जैसे आज एक ओलंपिक मेडल लेके आता है तो उसको 3 करोड़ रुपए मिलते हैं
1: जी,
2: एशियाड में मेडल लाके आता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन वो तब मिलते हैं जब वो मेडल लेके आ चुका है
1: जी।
2: लेकिन हमें चाहिए वो खिलाड़ी जिनमें जबरदस्त प्रतिभा है उनको मौका चाहिए
1: जी,
2: उनको मौका तब मिलेगा, और विशेष तौर से जब से 2% स्पोर्ट्स कोटा और आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, मैं थोड़ा सभी जो सुनने वाले होंगे उनकी जानकारी के लिए अवगत करवाना चाहूंगा, आउट ऑफ टर्न का मतलब है अगर आप सीनियर नेशनल के किसी भी कॉम्पिटिशन में जो भारतीय ओलंपिक संघ से और राजस्थान ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल है
1: जी,
2: उसमें अगर आप राजस्थान की जर्सी पहनकर मेडल लेके आते हैं 1st, 2nd, या 3rd पोजीशन, उसको राजस्थान सरकार एक फॉर्म भरने की जरूरत है केवल, घर बैठे आउट ऑफ टर्न मतलब किसी भी वैकेंसी की जरूरत नहीं है उसको नौकरी देगी, एक बहुत बड़ी पॉलिसी है इसमें कोई दोराई नहीं है
1: जी।
2: दूसरा 2% स्पोर्ट्स कोटा, किसी भी राजस्थान की कोई भी जो वैकेंसी निकलेगी केवल जो RS की मेन पोस्टों को छोड़ के एलाइड पोस्टों में उसमें भी है
1: जी,
2: और दूसरी कोई भी जैसे पटवारी की, ग्राम सेवक की, या 3rd ग्रेड शिक्षकों की, 2nd ग्रेड शिक्षकों की, या कोई भी वैकेंसी जो निकलती है उसके अंदर 2% स्पोर्ट्स कोटा है
1: जी।
2: निश्चित रूप से दिखने में खिलाड़ियों का फायदा दिखता है, लेकिन उसमें फायदा वो लोग उठाते हैं जो जागरूक इतने हैं कि जुगाड़ करके
1: जी
2: वो पहुंच जाते हैं,
1: और जो असली प्रतिभा है वो पहुंच नहीं पाती है, वही वाली बात जो है कि वो जो हम चाहते हैं कि जो प्रतिभा है जो गांवों में है, सुदूर में है, गरीबी में है, तो जो गुदड़ी के लाल हैं उनको ढूंढा जाए और उनको सामने लाया जाए और उनको निखारा जाए, उनको तराशा जाए और फिर उनको उनकी

0: सही मुकाम तक पहुंचाया जाए।
1: उसमें सबसे बड़ी बात क्या है साहब, सिलेक्शन पॉलिसी।
0: जी
1: मैं बेबाक बोलूंगा, उसमें मैं भी शामिल हूं।
0: जी
1: जब भी मुझे मौका मिलेगा कि भाई मैं एक राजस्थान की टीम को बनाऊं, तो उस टाइम मैं उन गुदड़ी के लाल की नहीं सोचता हूं, मैं मेरे लाल की सोच लेता हूं।
0: जी
1: और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट और ड्रॉबैक यह है कि जब तक सिलेक्शन पॉलिसी है उनमें अच्छी पारदर्शिता, और अगर कोई गलत सिलेक्शन करता है तो उसमें एक उचित दंड की व्यवस्थाएं जब तक खेलों में नहीं होगी, तब तक खेलों का उद्धार कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे एक 12 खिलाड़ियों की टीम जाती है, 7 खिलाड़ी अंदर खेलते हैं, जो बेंच पे जो बैठे हैं वो लगभग बरात होती है, ये सच है। और इस सच्चाई को जब तक हम नहीं कबूलेंगे, तब तक हम मेडल लिस्ट में या अंक तालिका में, ओलंपिक एशियाड में, हमेशा अपने को नीचे से ही देखना पड़ेगा, ऊपर से अंक तालिका देखने का काम नहीं पड़ेगा।
0: तो यानी कि एक तो खेलों को राजनीति से मुक्त किया जाए, और खेलों में निष्पक्षता, और जो खिलाड़ियों के सिलेक्शन है, उनकी जो चयन है, उसमें जो भी कमेटी जो उनका चयन करती है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ऐसे व्यक्तियों को सिलेक्शन कमेटी में लिया जाए, ये भी बहुत जरूरी है
1: साहब। अगर आप पॉलिसी अच्छी बनाओगे
0: जी,
1: तो अगर मुझे मान लो बना दिया, मैं खूब भ्रष्ट हूँ, लेकिन अगर अच्छी पॉलिसी है तो मेरे में दम ही नहीं है कि मैं किसी को गलत ले लूं।
0: जी
1: जब तक मैं जवाबदेह नहीं हूं, मैंने सिलेक्शन कर दिया, टीम चली गई, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। पॉलिसी ऐसी हो कि राजनेता चाहे तब भी नहीं कर सके,
0: बिल्कुल,
1: कोई अधिकारी चाहे तब भी नहीं कर सके, कोई खेल संघ का पदाधिकारी चाहे तब भी नहीं कर सके, अच्छा सिस्टम और एक दंड की उचित व्यवस्था हो।
0: वो तो दंड तो हर जगह आवश्यक है, क्योंकि भाई बहनों होते हैं प्रीति,
1: बिल्कुल,
0: जब तक भय नहीं होगा दंड का, तब तक कोई भी काम आपका संभव नहीं है।
1: सही बात,
0: आज के समय में की खासतौर से हम बात करें तो वो साथ के साथ प्रोत्साहन और अच्छे के लिए पुरस्कार और गलत के लिए दंड, ये जो एक हमारे कानून व्यवस्था है उसका एक सामान्य सिद्धांत है, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें कि आज, अब हम पिछले कुछ समय पे अगर नजर डालें, पिछले 10-5 सालों में तो कुछ खेलों में हमारी स्थिति में सुधार हुआ है देश की, जहां ओलंपिक में हमें मेडल का सूखा रहता था, अभाव रहता था, अकाल रहता था, अब कुछ मेडल आने लगे हैं, ओलंपिक में भी आ रहे हैं, एशियन गेम्स में भी आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आ रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इसके लिए हमारे जो सरकार है उसके प्रयास रंग लाए हैं, या कुछ और इसके कारक भी रहे हैं, किस प्रकार से और इस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं ताकि भविष्य में और ज्यादा मेडल लाए जा सके?
1: अभी भारत सरकार की 3 पॉलिसी खेल जगत में काम कर रही है।
0: जी
1: एक है एसटीसी,
0: जी
1: मतलब स्टूडेंट जो सिलेक्टेड होते हैं टैलेंट सर्च के बाद,
0: जी,
1: और वो सही सेंटरों के अंदर अभ्यास करते हैं। एक होता है खेलो इंडिया सेंटर टैलेंट सर्च, जिसके अंदर स्कॉलरशिप भी है और वहां बच्चा रह के प्रैक्टिस करेगा। और एक होता है एक खेलो इंडिया में एडवांस जो प्लेयर है,
0: जी,
1: जो चाहे किसी गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है या वो कहीं अन्यत्र प्रैक्टिस कर रहा है, उसको भी लगभग 10,000 रुपए मंथली स्कॉलरशिप के साथ समय समय पर उसको उस हायर सेंटर पे बुलाकर उसके टेस्ट टेस्ट भी होते हैं, उसकी साल भर का एक मैप तैयार होता है कि इसने, इस लड़के ने या महिला खिलाड़ी या पुरुष खिलाड़ी ने कितने गेमों में भाग लिया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि ग्राफिक्स तैयार होता है कि वो उसका ग्राफ अप जा रहा है या डाउन जा रहा है या पैरेलल रह रहा है।
0: जी
1: इससे क्या हुआ, जो बच्चे आज मान लो कोई गरीब गांव का बच्चा है लेकिन वो आज गांधीनगर एक साई सेंटर में प्रैक्टिस कर रहा है, गांधीनगर में वो लगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है लेकिन वहां गर्मी बहुत ज्यादा है,
0: जी,
1: तो भारत सरकार ने ऐसी भी स्कीमें की है, जैसे बेंगलोर के अंदर टेम्परेचर अच्छा रहता है या शिलारू है जो हाई अल्टीट्यूड सेंटर है जहां बहुत ठंडा रहता है, वहां भी भेजने का सिस्टम है। तो सरकार निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल में जब तक, जैसे चाइना के अंदर सिस्टम क्या है, चाइना की सबसे अच्छी जो पॉलिसी है वहां का जो सिलेक्शन सिस्टम है वो लगभग 5-6 साल से लेकर 10 साल के बच्चों के बीच एक पूरे चाइना के अंदर एक सघन अभियान चलाते हैं। उन्होंने चिन्हित कर रखे हैं कि चाइना का ये जो स्टेट है 3-4 स्टेट, यहाँ ये गेम अच्छे चलते हैं, इधर जिम्नास्टिक अच्छा चलता है, इधर वेटलिफ्टिंग अच्छा चलता है, जैसे भारत के अंदर पहाड़ी एरिया है जैसे मणिपुर है, मिजोरम है, उधर के जो राज्य हैं वहाँ के लोग पहाड़ी होते हैं तो उनको पता है वो वेटलिफ्टिंग में उनमें बहुत मजबूत होंगे।
0: सबसे पहले जरूरत जो टैलेंट हंट की है कि टैलेंट हंटिंग इस तरह से हो कि कोई बच्चा जो प्रतिभाशाली है उसको ढूंढा जाए और उसको ढूंढ कर निकाला जाए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। तो जो आपने चाइना की बात भी की है तो वो भी उनके वही सिस्टम है कि जो टैलेंट हंट वो करते हैं, टैलेंट हंटिंग वो बहुत ही
1: बहुत गहराई से,
0: बहुत गहराई से करते हैं। तो अगर आप प्रतिभा को शुरू में पहचान लेंगे, उसको तराशेंगे, तो जब तक वो बच्चे बड़े होंगे यानी कि 18-19 साल के, 20 साल के होंगे, तो वो तब तक काफी पॉलिश हो चुके होंगे। तो इसलिए उन बच्चों पर मेहनत की जाए। तो सबसे पहले तो कि हमारा जो टैलेंट हंट है वो बिल्कुल बढ़िया और सही तरीके से हो।
1: अब एक उदाहरण दूं सर मैं
0: जी।

0: जैसे मान लो मेरा शौक कबड्डी है
1: जी
0: और मैंने मेरे बच्चे को ट्रायल देने भेजा कबड्डी में
1: जी,
0: और कबड्डी कोच को यूं लगा कि ये बच्चा कबड्डी योग्य नहीं है, उसने निकाल दिया। चाइना में ऐसा नहीं है सर, चाइना में है जो बच्चा जाएगा वहां की अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि ये बच्चा किस लायक है, उसके चाहे मेडिकल टेस्ट होंगे, उसके जीन्स तक चेक होंगे, जो बोन मास उसका कैसा है, फैट मास कैसा है, उसकी बॉडी में जो कंपोनेंट्स है उसकी हाइट कैसी है, ग्रोथ कैसी है, उसके माँ बाप की, उसके परिवार की ग्रोथ कैसी है, उसके आधार पर वो बिल्कुल
1: कंप्लीट जो एक हम कहें कि परीक्षण के आधार पर,
0: परीक्षण के आधार,
1: ये नहीं है कि जो कोच है वो खुश हुआ तो सिलेक्शन हो गया, खुश नहीं हुआ नाराज हो गया तो सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, किसी भी प्रतिभा को लेना है या नहीं लेना है इसको लेकर।
0: और दूसरा क्या है सर, जैसे अपन आज कोई अरंडी का पौधा लगाते हैं, आप पानी डालोगे एक साल बाद वो आपको बहुत बड़ा वृक्ष बनता दिखाई देगा, वहीं अगर अपन अगर बरगद लगाएंगे तो 3-4 साल तो जमीन से ऊपर उठने में भी टाइम लगाएगा। वैसा ही जो लॉन्ग लंबी हाइट के जो जेनेटिक्स बच्चे होते हैं उनकी जो शुरुआती ग्रोथ होती है, चाहे खेल में चाहे वो स्किल सीखेंगे तब भी यूं लगेगा कि यार ये कुछ भी नहीं है। और लोग क्या करते हैं, उन बच्चों पे मेहनत करते हैं जो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं या बहुत जल्दी कुछ सीखते हैं, मतलब जो छोटे बोने बच्चे होते हैं शुरुआती स्तर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट है, उसके बाद वो खत्म है। इससे अच्छा उन बच्चों पे जिनकी ग्रोथ अच्छी है, जिनकी हाइट अच्छी है, जो बिल्डअप है, चाहे उनके पीछे लगना पड़े, उनको मन नहीं लगेगा क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनको गुरुत्वाकर्षण बल से भी लड़ना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उनकी ऊंची है, जो हर चीज से उससे प्रकृति से भी संघर्ष करना है, और छोटे आदमी को क्या, उसको तो जमीन के सारे सारे चलना है, तो सारे चलने वाला तुरंत रिजल्ट देता है। तो मैं उसको पकड़ के बैठ गया, मैं उस बच्चे पे 4 साल मेहनत करने की बजाय छोटे बच्चे पे 1 साल में रिजल्ट चाहता हूं, लेकिन वो बच्चा कहां तक पहुंचेगा, जयपुर तक। मैं अगर चाहता हूं कि वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट दे तो मुझे उस बच्चे पे काम करना पड़ेगा जिसकी ग्रोथ तो बहुत तगड़ी है
1: जी,
0: लेकिन वो सीख लेट रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक बात और आती है कि अगर हम बात करें कि अगर जो नागौर और राजस्थान की कि क्या संभावनाएं, किन खेलों में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, कम से कम हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं करें तो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर हमारे नागौर के बच्चे और राजस्थान के बच्चे किस किन खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं और उसके लिए किस प्रकार से उनको बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: नागौर विशेष तौर सर अगर सही ढंग से प्रशिक्षण दिया जाए तो जितने भी मार्शल गेम हैं, चाहे मार्शल गेम मतलब जिसमें मैन टू मैन सीधा फाइट होता है, जिसमें बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि इंजरी भी हो सकती है, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, जैसे मान लो वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में पता है कि अपोनेंट तो इधर आने से आएगी तो इधर बॉल आएगी
1: जी,
0: लेकिन फुटबॉल में खिलाड़ी भी आता है बॉल भी आती है, कबड्डी में खिलाड़ी भी आता है उसके साथ आपको 5-7 सामने रेडर के सामने एंटी रेडर भी मिलते हैं, हॉकी के अंदर बॉल भी आएगी, स्टिक भी आएगी, खिलाड़ी भी आएगा। इन सारे गेमों में क्योंकि आज आप भारत की जो थल सेना में भी आप देखोगे तो इंडिया में सबसे टॉप अगर कहीं के जो सोल्जर है वो इस क्षेत्र के
1: नागौर,
0: बिल्कुल नागौर और आसपास झुंझुनू मान लो चूरू सीकर
1: जी,
0: ये जो बेल्ट है, अगर आप 99 करगिल युद्ध देख लो उसके बाद भी जहाँ कहीं भी बहुत बड़ा ऑपरेशन करना हो, जैसे डोकलाम विवाद हुआ तब भी आपको इसी बेल्ट के फौजी सबसे ज्यादा लड़ते हुए मिलेंगे।
1: तो झुंझुनू
0: और खेल और फौज की लड़ाई में दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लड़ना वहां भी पड़ता है, लड़ना यहाँ भी पड़ता है, डर गया वो चाहे कितना ही टैलेंट है, खेलों में और युद्ध दोनों में कहीं जगह नहीं है।
1: बिल्कुल, जो डर गया समझो मर गया।
0: तो यहाँ बहुत टैलेंट है साहब, यहाँ हॉकी के छोटे छोटे गांवों के अंदर किन्हीं सारी शिक्षकों आगे साल 2 साल में ऐसे प्लेयर तैयार किए, जैसे यहाँ नागौर का मेरा गांव कालड़ी है उसके पास खड़काली गांव में आज से 15-20 साल पहले एक सारी शिक्षक आए थे, तो उसमें बच्चियां इंडिया कैंप तक पहुंची थी, यहाँ संकवास और यहाँ का आसपास का गांव जो हॉकी जैसे गेम में आज से 20-25 साल पहले भी वहां के खूब नेशनल प्लेयर निकले हैं। अभी कबड्डी में जैसे नागौर स्टेडियम में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो 8-10 जिलों के यहाँ बच्चे रह के प्रैक्टिस करते हैं, लड़कियां भी जैसे बाहर से यहाँ रह के प्रैक्टिस कर रही है, तो हमारे यहाँ पर एक एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट लड़की भी है, 3-4 बच्चियों के नेशनल मेडल भी लगे हैं, और पिछले साल जूनियर स्टेट में अपनी राजस्थान नागौर टीम विनर थी, नेशनल में मेडल था, तो उसमें अपने सेंटर के 7-8 बच्चे थे। तो ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उस पर लगातार एक अच्छी टीम के साथ मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी जी, तो समय की भी हमें सीमा है, उसका भी ध्यान रखना है, तो हम इससे पहले कि हमारी बातचीत को विराम दें, मैं आपसे चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं खेलों को लेकर, खिलाड़ियों से, उनके माँ बाप से, टीचर से, कोच से, खेल विभाग से, सरकार से, वो आपकी जो अपेक्षाएं अपील है वो आप बताएं हमारे श्रोताओं के लिए।
0: मेरी सबसे बड़ी अपील है अभिभावक से, क्योंकि बच्चा वहीं जाएगा जहां उसका अभिभावक ले जाएगा
1: जी,
0: क्योंकि जिस दिन वो खुद बूते जाने लायक होगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। वो बच्चों को खेलों में डालें, और सबसे बड़ी बात है उसको समय दें। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को ग्राउंड पे भेजा और वो 6 महीने बाद नेशनल चैंपियन बन जाएगा
1: जी।
0: उसका मौके मौके पर ध्यान रखें। खेल तभी चलेगा जब बच्चा, अभिभावक और कोच तीनों में गजब का सामंजस्य होगा। बच्चे में बहुत टैलेंट है, कोच बहुत ध्यान रख रहा है, अभिभावक लापरवाह है, बच्चा खराब होगा। अभिभावक बहुत जागरूक है, कोच बहुत जागरूक है, बच्चे में दिलचस्पी नहीं है, कोई मतलब नहीं है
1: जी।
0: अभिभावक और बच्चा दोनों बहुत जागरूक है लेकिन अच्छा कोच उनको नहीं मिल रहा है, तब भी कोई मतलब नहीं है। तीनों की तिगड़ी मिलेगी, आपस में भरोसा होगा
1: जी।
0: और खेल कोई ना पैसे से चलता है, खेल चलता है भरोसे से। जैसे एक पिता पर
1: जी।
0: बच्चा भरोसा करता है, वैसे कोच पे भरोसा करना पड़ेगा, और विशेष तौर से कोच को भी उस भरोसे को कायम रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके ग्राउंड पे एक बेटी भी आती है, बेटा भी आता है
1: जी।
0: उसमें अगर वो कुछ गलत करता है तो उसमें उसको वो दंड मिलना चाहिए कि जो लोगों के लिए एक मिसाल हो, क्योंकि वो वहां बैठा है जहां माँ बाप होने चाहिए
1: जी,
0: निश्चित रूप से।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, आइए आप खेलिए, खेलों में बच्चों को समय दीजिए। सरकार की खूब सारी स्कीम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार खर्चा करे, खर्चों से खेल नहीं चलता है, खेल चलता परंपराओं से
1: जी, भावना से,
0: बिल्कुल
1: लगन से।
0: आज जैसे मेले भरते हैं
1: जी,
0: वैसे खेलों के मेले भरने लगे, लोगों का खेलों के प्रति रुझान हो। आज कितने ऐसे गांव है जिसमें अगर लोगों को पूछे भाई आपके गांव में सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है, किसी को पता नहीं है। सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला कौन है, किसी को पता नहीं है। गांव में पहलवान कौन है ये पता होता था
1: जी।
0: आज आप पूछ लोगे 10वीं में कौन होशियार है बता देगा, साइंस का सबसे होशियार कौन है बता देगा, गांव में कितने डॉक्टर है कोई बता देगा, लेकिन ये बता देगा क्या कौन अच्छा दौड़ता है, क्योंकि दौड़ना आदत नहीं है। गांव में ये कोई बता देगा कि भाई रामदेव रा पैदल यात्री हमारे सबसे ज्यादा 20 बार ये गया है, लेकिन किसने किस खेलों में कितना भाग लिया, लोगों के पास आंकड़े इसलिए नहीं है क्योंकि सामाजिक जागरूकता नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात। तो वो जागरूकता लाने के लिए,
0: जागरूकता लाने के लिए मेले लगाने होंगे, गांव में लोगों के प्रति, खेलों के प्रति रुझान लाना होगा। केवल खर्चा करने से आज आप देखोगे कि एक सर्च करें अपने,
1: बिल्कुल
0: ऐसे ऐसे ग्राउंड बन रहे हैं जिसमें कभी किसी ने खेला ही नहीं और वो खत्म हो गए, और ऐसी खूब जगह है जहां खेल का मैदान नहीं है, वो जैसे तैसे मान लो कोई रिंग लटका के अस्थाई बेल्डिंग करवा के काम चला रहा, दूसरी तरफ 1 करोड़ का ग्राउंड है वो यूं ही खत्म हो गया जिसपे किसी ने नहीं खेला। सबसे बड़ी बात है ग्राउंड वहां बने जहां उस खेल का चलन हो,
1: जरूरत
0: किसी ने सिफारिश की, आपने खेल मैदान बना दिया वहां कोई देखने वाला नहीं है। आज आप सड़क से निकलो यहाँ से जयपुर के लिए, खूब ऐसे स्टेडियम होंगे जो बन के तैयार हुए और खत्म हो गए, कोई नहीं खेला उसमें,
1: वहां से कोई खिलाड़ी नहीं निकला।
0: और कुछ ऐसी जगह है जहाँ कोई खेल कूद सुविधाएं नहीं है लेकिन आपको 500 बच्चे खेलते हुए मिलेंगे
1: जी।
0: तो एक जो चयन हो कि भाई कहाँ किस खेल का मैदान बने, तो उसके लिए सबसे पहले गांव में केवल नेताजी की या किसी की सिफारिश नहीं हो, उसका खेल में उस गांव का क्या रिकॉर्ड है उसके आधार पर खेलों का निर्माण, खेल मैदान बनने चाहिए सर।
1: तो कुल मिलाकर और हम ये कह सकते हैं कि खेलों को अगर बढ़ावा देना है, हमारे देश को खेलों में आगे ले जाना है, तो केवल सरकार पर निर्भर रहना वो सही नहीं है। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है, फंड की जरूरत है, फंड भी दे रही है, लेकिन हमें सामाजिक स्तर पर भी इसमें जागरूकता लानी पड़ेगी। जैसा कि आपने बताया, बच्चों के साथ अभिभावकों को और जो भी खेल के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कोच हो, चाहे और संस्थाएं हों, पदाधिकारी हों खेल संघों के, सबको मिलकर ये निष्पक्ष और एक हम कहें निष्ठा के साथ, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम एक खेलों में देश का अच्छा भविष्य देख सकते हैं। गोदारा साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देश विदेश तथा नागौर जिले में कबड्डी सहित अन्य खेलों और खिलाड़ियों की दशा और दिशा विषय पर जिला खेल अधिकारी नागौर श्री सोहन लाल गोदारा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत FM एंड 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए गजल हरिहरन की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में गजल FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आवाज लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म एक दूजे के लिए।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म राम लखन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार वर्मा मलिक, फिल्म जानी दुश्मन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म धर्म कांटा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत रेशमा की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का फिल्म हीरो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म लव आजकल।

कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म जग्गा जासूस।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए, फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: कीजिए मेरा नमस्कार। लीजिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणपति स्तुति से।

पृथ्वी गंधर्व की आवाज में विक्की नागर की रचना और सुदीप बनर्जी की बनाई धुन पर अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग।

0: टू इस एल्बम का गीत अभी आप सुन रहे थे। गायक, कलाकार, गीतकार और संगीतकार अपूर्व थे।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
5: हाँ जी हाँ।
4: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
5: नहीं नहीं, अभी नहीं।
4: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
5: है ना, बोलो, बोलो।
4: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
6: कुछ लिखा,
4: और फॉलो कीजिए विविध भारती के

0: ऑफिशियल पेज को।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग जिंदगी की जुबान। इस एल्बम का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। संदीप गुप्ते ने इसे लिखा है, महेश खानोलकर ने इसे संगीतबद्ध किया है और आवाज है पद्मश्री पद्मजा फैनानी जोगलेकर की।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। द मॉर्निंग सन इस एल्बम से अब आपको गजल सुनवाते हैं सुरेश वाडकर की आवाज में। इस गजल के रचनाकार हैं रविंद्र जैन और धुन भी रविंद्र जैन की।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक

0: अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला वो गट लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के।
4: फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान। साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
6: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम रंग तरंग और अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में। खिलेश शर्मा ने इस गीत की रचना की है, संदेश सांडिल्य ने धुन बनाई है।

हे प्रेम एल्बम का नाम है ये, और आवाज और साथ ही संगीत मिलिंद इंगले की, रचना की है श्याम अनुरागी ने।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

चित्रा सिंह की गाई गजल। सुदर्शन फकीर का लिखा गीत।

0: द लेटेस्ट जगजीत सिंह और चित्रा सिंह गजल एल्बम से ये गजल आपको चित्रा सिंह की आवाज में हमने सुनवाई। गीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, सुदर्शन फाकिर।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
0: तन्हा दिल इस एल्बम का गीत, आवाज शान की, राम संपत का संगीत।

रंग तरंग की आखिरी प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं। इब्राहिम अश्क की रचना, अली घनी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है। हंसराज हंस की आवाज है। एल्बम का नाम झांझरिया।

अली गनी का संगीत बतिया गीत हमने आपको सुनवाया हंसराज हंस की आवाज में झांझरिया एल्बम से, और ये गीत बना कार्यक्रम रंग तरंग की आखिरी प्रस्तुति। इसी के साथ दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: 사랑. अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आप।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साखना के साथ बैठक में यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। नई दिल्ली में परियोजना के शुभारंभ पर श्री यादव ने कहा कि इससे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल जगह बना ली है। इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत 100 डेज फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में। दिलीप ताहिर का लिखा गीत है, राम लक्ष्मण का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल। पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम की पुण्यतिथि पर हम यादों की महफिल कार्यक्रम में उन्हें याद कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं के गाए गीत। अगला गीत हसन कमाल ने इस गीत को लिखा है, नौशाद ने संगीतबद्ध किया है, गाया है एसपी बालसुब्रमण्यम ने। तेरी पायल मेरे गीत फिल्म का नाम।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
4: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
6: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों पर, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
4: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। एसपी बालासुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अगला गीत समीर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत, फिल्म का नाम प्रेम कैदी।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
5: 10, 9, 8, 7
4: हम आपके हैं कौन, ये है फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाजें।
5: 2, 1 लेट्स स्टार्ट द फन।
4: रविंद्र रावल का लिखा गीत है, राम लक्ष्मण का संगीत।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
3: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस वक्त साजन फिल्म का गीत, एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

पत्थर के फूल फिल्म से गीत अभी हमने आपको सुनवाया। अगला गीत सुनवा रहे हैं हमसे है मुकाबला फिल्म से। पीके मिश्रा के का लिखा गीत है, या रहमान का संगीत है और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज, साथ ही पल्लवी और उदित नारायण ने साथ दिया है।

एसपी बालासुब्रमण्यम, पल्लवी और उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीके मिश्रा ने इसे लिखा था, एआर रहमान का संगीत था। हमसे है मुकाबला, ये था फिल्म का नाम। अब है कार्यक्रम का आखिरी गीत, मैंने प्यार किया। इस फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजें, असद भोपाली का लिखा गीत, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: इसी गीत के साथ यादों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम को याद करते हुए उन्हीं के गीत सुनाए कार्यक्रम यादों की महफिल में।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM एंड 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के

0: तहत वाराणसी से वड़नगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज संवाद किया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सभी को मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाना है और इस काम में सभी चुनौतियों को हराकर इस संकल्प को साकार करना है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज जयपुर के दादिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इससे पहले श्री नवीन ने सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। वहीं श्री नवीन और मुख्यमंत्री शर्मा ने अल्बर्ट हॉल पर विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भाग लिया। श्री नवीन ने आमजन को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया और उनसे बातचीत की। उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत नगरपालिका अध्यक्ष और नगर निगम महापौर पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। जयपुर और जोधपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए मतदान हो रहा है, जबकि कोटा में बीजेपी की अनुसुईया गोस्वामी को मेयर चुन लिया गया है। जयपुर में भाजपा के सुनील कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर, जोधपुर में भाजपा के प्रसन्न चंद मेहता और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी के बीच मुकाबला है। कोटा जिले की सुकेत नगर पालिका में भाजपा के जितेंद्र चोपड़ा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। श्रीगंगानगर जिले की श्री विजयनगर नगर पालिका के चुनाव का नतीजा आज घोषित किया गया है। वहां कांग्रेस के सुशील कुमार मीढ़ा विजयी हुए हैं। गौरतलब है कि वहां कुछ कारणों से मतगणना स्थगित की गई थी। उधर खाटू श्यामजी नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव अग्रिम आदेश तक स्थगित हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये परियोजना जंगलों में लगने वाली आग का प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में तकनीकी और जमीनी स्तर की क्षमताएं बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री यादव ने अग्रिम पंक्ति के वन कर्मियों की परिचालन और प्रशासनिक क्षमता मजबूत करने पर भी बल दिया। श्री यादव ने बताया कि परियोजना के तहत व्यावहारिक तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए शोध और विकास, जमीनी स्तर पर नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए पायलट परियोजनाएं और प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही सार्क और अन्य विकासशील देशों के साथ बेहतर कार्य प्रणालियां साझा की जाएंगी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत प्रदेश भर के अस्पतालों के अंदर और आसपास संचालित कैंटीन तथा खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच शुरू की गई है। अभियान के पहले दिन कल 100 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों तथा आसपास के 172 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 159 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए और करीब 1500 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई। ये अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को यानी 27 सितंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव आज तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट।

0: लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
0: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: धर्मात्मा फिल्म का गीत है, लेकिन आगे आपको बताना है कि किनकी आवाजें हैं।
1: तुमने किसी से कभी प्यार किया है?

जी हाँ, हमारे सभी श्रोताओं के कमेंट्स आ गए हैं। हमने जो पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है और किन्होंने गाया है, सभी ने सही जवाब दिया है। धर्मात्मा फिल्म का गीत है। मुकेश और कंचन की आवाजें हैं, इंदीवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

संवाद बोलने का दिलकश अंदाज, काउबॉय की इमेज वाले फिरोज खान साहब की क्या कहने, बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान जी की अभिनय क्षमता बड़ी गहरी है, रोमांटिक, गंभीर, कॉमेडी, स्टाइलिश, सभी कुछ उसकी उनकी फिल्मों में पाया जाता है, उनको शश्वत नमन। बिल्कुल। एक और श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान हिंदी सिनेमा के ऐसे बहुमुखी कलाकार थे जिनका व्यक्तित्व उनकी फिल्मों की तरह ही बेहद आकर्षक और प्रभावशाली था। उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, आत्मविश्वास, दमदार आवाज और अनोखी शैली ने उन्हें अपने दौर का विशिष्ट अभिनेता बनाया। वे केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि सफल निर्देशक और निर्माता भी थे। अपने आधुनिक अंदाज, बेबाक व्यक्तित्व और फैशन के प्रति खास पसंद के कारण वे लंबे समय तक दर्शकों के बीच चर्चा में रहे। फिरोज खान ने अपने काम और व्यक्तित्व से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई जिसे आज भी याद किया जाता है। हमारे एक श्रोता हैं जो हमें हमारे द्वारा बजाई गई धुनों को जो हम साथ साथ बजाकर आपको सुनवाते हैं उसके बारे में हमें जानकारी भेजी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि बहुत ही प्यारे लगे फिरोज खान। साथ ही वो कह रही है कि प्यार कोई सोच समझकर किया हुआ फैसला नहीं होता, ये तो बस हो जाता है। कभी किसी की एक मुस्कान से, कभी उसकी बातों से, उसकी प्यारी सी आवाज से, उसके भोलेपन से, उसकी सादगी से, और कभी किसी बिना किसी वजह के भी कोई दिल के करीब आ जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब कोई अजनबी से अपना बन गए। आज तो लोगों की एक ही पसंद दिख रही है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। फिल्म धर्मात्मा का ये गीत, जी हाँ, और ये हमने सुनवा दिया है, हमारे कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति थी ये गीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज यादों की महफिल प्रोग्राम बढ़िया गीतों से सजा था, सुरीला सफर में ऐसे गाने सुनने की चर्चा तथा सवाल जवाब की अपेक्षा करते हैं। आप सुनिए आगे ये गीत जो आज हमने शामिल किए हैं कार्यक्रम श्रीला सफर में, आनंद लीजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते दिल बाग बाग हो गया, ऐसे खूबसूरत एहसास कभी जगाने के लिए मूड बनाना पड़ता था, आज शब्दों का ऐसा तिलिस्म देखने को मिला कि पढ़ते पढ़ते हम बुढ़ापा पीछे छोड़ जवान हो गए। क्या बात है, अब ढूंढते हैं प्यार को, देखिए कहाँ मिलता है। आज तो गीतों की बहार होगी, उसी में दिल बहलाते हैं और एक अच्छी दोपहरी विविध भारती के संग बिताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको प्यार तो है ही विविध भारती के संग। और अब जो हम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइएगा इस फिल्म का नाम।

जी हाँ श्रोताओं, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मैं फिरोज खान साहब को स्टाइलिश आइकन कहूंगा। ये हमारे एक श्रोता का कहना है कि उनकी मस्त चाल

सच्चा प्यार किसे कहते हैं ये भी साथ बताते चलिए। क्या आकर्षण भी सच्चा प्रेम दर्शा सकता है?

0: इस गीत की फिल्म का नाम आपको बताना है, लेकिन इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत, ये हमने आपको बताया। और अब आपको सुनवाते हैं कुछ संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है।

तो श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। और इस कार्यक्रम की ये खास बात है कि जो गीत हम चुनते हैं उससे ये कार्यक्रम बनता है सुरीला, लेकिन आपके संदेशों से बनता है सजीला। तो भेजते रहिए हमें आपके संदेश, हमें इंतजार है बेसब्री से आपके संदेशों का। अभी हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार में पढ़ना एक अतार्किक रोमांच है, एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी सामान्य और तर्क संगत दुनिया में अलौकिक मानने के लिए प्रलोभित होते हैं। प्यार की भावना व्यक्ति के अस्तित्व की अनुभूति को जीवन के सभी पहलुओं में एक सर्वोच्च आनंद की अनुभूति से भर देती है। उन्होंने एक बड़ा ही प्रयास से बहुत बड़ा संदेश हमें भेजा है, विस्तार में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है, फिर भी आपका संदेश हमने शामिल किया है कार्यक्रम में। आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रही हैं कि प्यार तो कब, क्यों, कहां और किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। माना कि किसी को देखा और वो दिल में उतर गया और प्यार हो गया, पर प्यार जब चेहरे पे झलकता है तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। उसकी एक नजर मिल जाए इतनी फरियाद, चाहत सचमुच निगाहों का ही खेल है। उनकी निगाह पड़े तो दिल खुश, न पड़े तो अपनी निगाहें उदास। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की यादों की महफिल सजी हुई है, यानी कि वो सुन रहे थे तब उन्होंने ये संदेश हमें भेजा। मेरा बहुत ही पसंदीदा गायक एसपी बालसुब्रमण्यम, उनकी जयंती, उन्हें याद किया जा रहा है और सुपरहिट गीतों से सजा हुआ इन्हें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया। जी, बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि जिंदगी की राह में जब कोई हम सफर मिल जाता है तो खामोश धड़कनों को भी एक नया साज मिल जाता है। तुम्हारी एक हल्की सी मुस्कुराहट लाती है बहार, जब तुम देखते हो तो थम जाता है संसार। मोहब्बत तो वो पावन दुआ है जो भगवान से मिलवाती है, सच्ची चाहत ही दिलों के सारे फासले मिटाती है। भुलाकर शिकवे गिले थाम लो हाथ, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। जी हाँ, वो गीत कार्यक्रम का पहला गीत नहीं था, वो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि प्यार सिर्फ खूबसूरत चेहरे और बातों से नहीं बल्कि नीयत की सच्चाई से भी पहचाना जाता है। मन में जरा सा भी संदेह अगर उठ जाता है तो प्यार प्यार नहीं मिल पाता और खो जाता है मिलने की बजाय।

जी श्रोताओं, बताते चलिए कि जब किसी से प्यार हो जाता है और वो हमारा साथी बन जाता है, तो आप उसकी तारीफ में क्या कहना पसंद करते हैं? कब आपने आखिरी बार तारीफ की थी उसकी, और कैसे, ये बताइए।

जी हाँ, एक और गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म धर्मात्मा से। आवाजें फिर से मुकेश और कंचन की थी। इंदीवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्रेम अपने आप में निर्मलता, शुद्धता, करुणा और असीम आनंद को समेटे हुए है, और यह वह चुंबकीय खिंचाव है जो इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के कण कण को एक सूत्र में बांध कर रखता है। आज के आधुनिक और व्यवहारिक दौर में भले ही प्यार के मायने और उसकी अभिव्यक्ति के तरीके बदल गए हों, लेकिन इसका मूल स्वरूप आज भी वही है। प्यार का मतलब केवल किसी के ख्यालों में खोए रहना या पजेसिव होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के आत्मिक विकास में सहायक बनना है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने कही। प्यार जीवन का वह खूबसूरत उपहार है जिसे जितना बिना किसी स्वाद के बांटा जाए, यह उतना ही गहरा और अनंत होता जाता है। बिल्कुल 100%। अच्छा, हमने आपसे पूछा कि आपने कब आखिरी बार अपने साथी किया जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी तारीफ की थी, वो बताते चलिए। हालांकि खूबसूरती की तारीफ ना की जाए तो कैसे चलेगा? हर खूबसूरत चीज की, अंदाज की, व्यवहार की, बात की या किसी खूबसूरत इंसान की तारीफ तो कर ही देना चाहिए, खासकर जिससे आप प्यार करते हैं, उनकी तारीफ में कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो बताइए आपने कब की थी तारीफ उनकी जिन्हें आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी एक श्रोता कहती है कि तुम्हारी मौजूदगी से जिंदगी में एक अलग ही नूर है। शायद इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सादगी दिल को छू जाती है। जब तुम अपनी उन मासूम नजरों से देखते हो तो लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। प्यार कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ऐसा पावन बंधन है जो दो सच्चे दिलों की धड़कन बन जाता है। जी हाँ, तुम्हारी इसी शरारत, जरा सी शरारत और वफा ने दिल को मुस्कुराना सिखा दिया। ऐसा लगता है मानो सदियों का कोई अधूरा ख्वाब आज तुम्हारे साथ मुकम्मल हो गया हो। बिल्कुल प्यार ऐसा ही एहसास दे जाता है। हमारे श्रोताओं ने हमें गीत भी लिखकर भेजे हैं, उनमें से कई गीत ऐसे हैं जो अभी तक जो बच चुके हैं वो भी शामिल हैं। आप आगे सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। और एक श्रोता कह रही है कि प्रेम का एहसास बड़ा सरल है मगर तकदीर के नियम बड़े जटिल हैं। यह बड़े किस्मत वालों को मिलता है। कभी कभी लगता है प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियां भी कभी कभी बड़ी अराजक हो जाती हैं। वे किसी नियम को नहीं मानती और प्रेम टूट जाता है। इंसान इसी त्रिकोण में अपने अर्थ खोजता रहता है और प्रेम की यही खोज उसे इंसान बनाती है, एक सच्चा इंसान। बहुत खूब। अब आ

यहाँ है अगला गीत। क्या आपने किया ऐसा किसी के लिए कि वो कहे दिन तो दिन रात तो रात। भेज दीजिए हमें अपनी यादें, अपने संदेश।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म सफर मुख्य कलाकार राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान ये बता रहे हैं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो अपनी श्रीमती जी की तारीफ तो करता हूं और कहता हूं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, साथ ही साथ विविध भारती की तारीफ भी करता हूं। क्या बात है, ये तो बहुत जरूरी है, आखिर विविध भारती भी तो आपके जीवन का प्यारा साथी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान सिर्फ अभिनेता नहीं थे बल्कि एक सफल फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कुर्बानी, धर्मात्मा और अपराध जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया। भव्य और बड़े बजट की फिल्में, उनकी फिल्मों में खूबसूरत लोकेशन, भव्य सेट, बेहतरीन गाड़ियां और शानदार संगीत उनकी पहचान थे। एक श्रोता कहते हैं कि बहुत प्यारा गीत है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, मुकेश ने गाया है। बिल्कुल। एक श्रोता कह रही है, प्यार में पसंद नापसंद का अंतर स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए जबरदस्ती सब कुछ अपनाना जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपसी समझ और सम्मान पर आधारित होता है। जी हाँ, प्यार तो ऐसा ही होता है। एक श्रोता कह रही हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे गीत बेहद लोकप्रिय गीत, भावुक गाना है, जिसे मुकेश ने अपनी जादुई आवाज दी है। जी हाँ। हमारे को श्रोता कह रहे हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, परंतु दोनों दिलों के बीच में ईमानदारी और विश्वास होना जरूरी है। प्यार जीवन में जरूरी है, तभी तो मैं अपनी धर्मपत्नी को यह गीत गाकर सुनाता हूँ। तेरी सूरत पर नहीं, मैं तेरी सादगी पे मरता हूँ। क्या बात है, तेरा साथ है तो इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। बहुत सुंदर। एक और श्रोता कह रहे हैं कि कंचन जो एक उभरती गायिका रही हैं, जब कल्याण जी आनंद जी का संगीत अपने शबाब पर था, तभी उन्हें कुर्बानी, धर्मात्मा और कालिया जैसे फिल्मों में गाने का मौका मिला। कल्याण जी वी जी शाह के भाई बाबला शाह के साथ उन्होंने कई लोकगीत गाए, चटनी गीत उनका खूब चला था। बाद में बाबला शाह से कंचन ने शादी कर ली। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि तारीफ की हमने उस परमात्मा की जिसने ये सुंदर और प्यारा सा संसार बनाया, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता फिरोज खान अपनी विशिष्ट शैली, अनूठे अंदाज, डैशिंग पर्सनालिटी के लिए बॉलीवुड के पहले स्टाइल आइकन और काउबॉय के रूप में जाने जाते थे। फिरोज खान स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज, उन्हें बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश अभिनेता माना जाता था। उनके लेदर बूट्स, हैट्स, सिगार और वेस्टर्न लुक ने हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड सेट किया था। बिल्कुल। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, ये हमें लिख भेजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी शादी के पहले मैंने पत्नी से 1 साल प्यार किया, 1 साल बाद हमारी शादी हुई। अब हमारी शादी को 40 वर्ष हो चुके हैं, हम आज तक प्यार कर रहे हैं। जी, प्यार तो करते रहिए। सफर फिल्म का गीत हमने आपको सुनवा दिया था मुकेश की आवाज में, इंदिवर की बोल थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उससे जुड़ी यादें हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये है नागिन फिल्म का गीत। भाई, हमने तो ये फिल्म बचपन में देखी थी और इसे देखने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप अपनी यादों के बारे में बताइए कि क्या आपने इस फिल्म को देखकर सोचा था।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा अपनी श्रीमती जी की तारीफ करता रहता हूँ, खासकर आज जब जबलपुर में रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और विविध भारती पर बेहतरीन गीत बज रहे हैं। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, अदरक इलायची की चाय की डिमांड भी कर रहा हूँ। क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैंने प्यार किया था पर ब्रेकअप हुआ, उसके बाद मैंने कभी प्यार किया नहीं, अरेंज मैरिज किया और उनसे ही प्यार किया। ये तो बहुत अच्छी बात है।

जी हाँ, तेरे मेरे याराने हो सदियों पुराने, जब प्रेम हो जाता है तो याराने कुछ ऐसे ही लगते हैं। फिल्म का नाम तो हमने आपको बता दिया था, बाकी जानकारी आप बता दीजिए कि किसने लिखा है इस गीत को, किसने संगीतबद्ध किया है। और हमने आपसे पूछा था, देखिए हमने तो बचपन में देखी थी फिल्म, तो हम बड़े छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। फिल्म का वो खौफनाक रोमांचक अंदाज देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहली बार एक नागिन को हमने एक्ट्रेस या एक्टर के रूप में देखा था। तो ये तो हमारी बात थी, हमने आपके अनुभव पूछे हैं, आपने भेजे हमें संदेश, देख लेते हैं हम। फिलहाल हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सिर्फ पाने से नहीं पर उसकी यादों से भी प्यार किया जाता है। मैं मोबाइल एप्लीकेशन से ओमान से सुन रहा हूँ। एक श्रोता हमारे फिलिपिन मनीला से सुन रहे हैं, और क्या बात है, हमारे कई श्रोता हैं जो देश के बाहर से भी हमें सुनते हैं विविध भारती को, और आनंद लेते हैं इन गीतों का। संदेश भेजने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की, जी हाँ, एक श्रोता कह रहे हैं कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की करते हैं, लेकिन सुनने को यह मिलता है कि आप तो काम बताओ क्या है। जी कभी कभी तारीफ करने से ऐसा भी

लग जाता है, संदेह हो जाता है ना कि कोई काम ही होगा जरूर। वे बिना काम के भी प्यार जता देना चाहिए।

श्रोता कह रही है, क्या खूब लगती हो, हिंदी सिनेमा के उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है जहां धुनों में आत्मा और शब्दों में गहराई हुआ करती थी। इंदिवर ने प्रेम की मासूमियत और अमरता को सरल शब्दों में पिरोया है। सूरज होगा जब तक नील गगन में और प्यासे दिल को आज मिला है सागर जैसी पंक्तियां प्रेम के अटूट विश्वास और तृप्ति को दर्शाती है। यह कंचन के सबसे सफल गानों में से एक है। क्या बात है। एक श्रोता कह रही है, तब तारीफ मजबूरी हो जाती है, नहीं करने पर प्यार का नशा उतर जाता है। हमारी एक श्रोता हमको हमसे साझा कर रही है कि क्या खूब लगती हो ये गीत हमने कैसेट में भी बहुत सुना और रेडियो पर भी बहुत। एक श्रोता कह रहे हैं कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत बच चुका है। जी बिल्कुल, बस आप आनंद लेते रहिए इस कार्यक्रम में। हमारे एक श्रोता का कहना है कि फिरोज खान साहब की बहुत शानदार फिल्म रही है और इस फिल्म का पूरा फिल्मांकन अफगानिस्तान में किया गया था। पूरी एक टीम एक महीने से ज्यादा वहां पे रही थी। जी धन्यवाद ये बात साझा करने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि वाह क्या गलत फहमी है, दूसरा पहला और पहला दूसरा गीत। क्या कहना चाहते हैं आप? एक श्रोता कहते हैं कि सांसें चलना जिंदगी की पहचान हो सकती है, पर उस जिंदगी में रंग और अर्थ भरने का काम प्यार ही करता है। प्यार इंसान को अकेलेपन के एहसास से बचाता है और हर मुश्किल मोड़ पर एक मुख संबल देता है। प्यार हमें सहानुभूति, दया और निस्वार्थ होना सिखाता है। बिल्कुल, बहुत खूब। तो श्रोताओं अब जो गीत आने जा रहा है, बताइएगा कि ये गीत गाया किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है, साथ ही फिल्म का नाम भी आप ही बताएंगे।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जी हाँ, अभी हमने आपको गीत सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कि कौन सी फिल्म का गीत है, किसने संगीतबद्ध किया है, किसने लिखा है, और आपने जवाब भेजे हैं हमें बिल्कुल सही। ऊंचे लोग इस फिल्म का ये गीत था। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया था, मजू सुल्तानपुरी ने लिखा था, चित्रगुप्त का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सूरत का सौदा नहीं, दो दिलों के बीच वो खामोश ठहराव है जिसमें किसी और की मुस्कान तुम्हारी अपनी लगने लगती है, और हर किसी को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सब उसे ढूंढते तो हैं, पर निभाने का हुनर, झुकने की नरमी और ठहर कर देखने की नजर सबके पास नहीं होती, और जिंदगी में वो इसीलिए जरूरी है कि जिस्म तो रोटी कपड़े से चल जाता है पर रूह तब ही खिलती है जब कोई चाहत भरी निगाह से देखे, कोई वफा के साथ पास हो, वरना जिंदगी गुजर जाती है पर गुलजार नहीं होती। बहुत सुंदर बात आपने कही है और साथ ही आपने कुछ गाने भी लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने कहा है, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं विविध भारती से, वो भी कई सालों से। जी, विविध भारती से तो आपका प्यार चलते ही रहना चाहिए।

एक श्रोता कह रहे हैं कि अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वे अपने समकालीन हीरोइनों में लोकप्रिय थे, यानी कि वो फिरोज खान के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हीरोइनों ने अभी भी उनके बारे में ये कहा है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे बस दिल से महसूस किया जाता है। जहां दूरियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन दिल का जुड़ाव, एक दूसरे की फिक्र कभी कम नहीं होती। सच में खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा पवित्र और सच्चा प्यार नसीब होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। यहाँ सच्चे प्यार की ही सच्चाई बताई जा रही है, और यह सच्चा प्यार वैसे तो अनिर्वचनीय होते हुए मुख फल आस्वाद ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है कि किंतु यह प्यार त्याग और समर्पण के दृढ़ दीवार से न झुकते हुए अपने विनम्रता के हथियार से समस्त संसार की झंझावतों से लड़ने में समर्थ भी होता है। क्या बात है, हिंदी के शब्दों का सुंदर उपयोग आपने अपने संदेश में किया है। तो अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो होगा कार्यक्रम का आखिरी गीत। बता दीजिए, हमने यही तो सवाल पूछा था आपसे हमारी इबारत के अंत में कि आखिर क्यों नहीं मिलता सभी को प्यार जिंदगी में। अब ये जो गीत सुनवा रहे हैं किसने गाया है ये बता दीजिए।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने सुरीला धड़कन कार्यक्रम में फिर से प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबादत से यह बात सामने आती है कि आज सुप्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक फिरोज खान के फिल्मों की ही बात हुई है स्मृति दिवस पर। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, उन्हीं के गीत आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए।

कभी कभी दो लोग एक दूसरे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, साथ रहना भी अच्छा लगता है, बातचीत में मिठास भी होती है, लेकिन फिर भी उनके बीच में प्यार जन्म नहीं लेता। शायद इसलिए हर किसी को जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि प्यार सिर्फ किसी का मिल जाना नहीं, प्यार है किसी के साथ अपने मन की वो जगह बांट लेना जहां हम बिना किसी दिखावे के अपने सबसे सच्चे रूप में रह सके। जी हाँ, तो आज आप सभी के संदेशों के लिए, सभी जानकारियों के लिए और हमसे अपनी यादों को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम से अब इजाजत लेती हूँ मैं, पूजा नारानिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 47वीं कड़ी।

स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रसंग, आने वाले समय में राष्ट्रगीत कौन सा होगा, इस विषय में आम लोगों के या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों के मन में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं था। मानो वंदे मातरम ही राष्ट्रगीत होगा, ऐसा उन्हें विश्वास था। इस स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश का नेतृत्व करने वाले और सभी के मन में आदर का स्थान रखने वाले महात्मा गांधी की इस बारे में भूमिका अभी स्पष्ट होनी थी। कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा गाए गए वंदे मातरम का प्रभाव उनके मन पर स्थायी रूप से रहा था। 29 अक्टूबर 1947 को गांधी जी की दिल्ली में हुई प्रार्थना सभा में श्री अरविंद के अध्यात्म मार्ग के शिष्य और गायक दिलीप कुमार रॉय ने अपनी संगीत रचना में वंदे मातरम का गायन किया। अब सुनिए दिलीप कुमार रॉय के स्वर में वंदे मातरम की वो संगीत रचना जो उन्होंने बंगाली लोकगीत शैली में गाई थी।

वंदे मातरम इस गीत के प्रति दिलीप कुमार रॉय को असाधारण आत्मीयता थी, इसलिए उन्होंने दक्षिण हिंदुस्तानी और उत्तर हिंदुस्तानी भारत की दो मुख्य गायन पद्धतियों में जुगलबंदी या सहगायन के रूप में संगीत रचना बनाई। भारत रत्न M.S. सुब्बुलक्ष्मी और स्वयं दिलीप कुमार रॉय ने ये गायन किया था।

0: भारत स्वतंत्र हुआ फिर भी संविधान सभा की अंतिम बैठक अभी होनी थी। राष्ट्रगीत कौन सा हो इस विषय पर चर्चा शुरू थी। पंडित नेहरू की पहल पर रविंद्रनाथ के जन गण मन गीत का राष्ट्रगीत के लिए आग्रह किया गया। वंदे मातरम में राष्ट्रगीत के अनुरूप या अंतरराष्ट्रीय समूह में बजाई जा सके ऐसी संगीत रचना नहीं है ऐसा एक मुद्दा रखा गया था। उसका समाचार पढ़कर प्रसिद्ध संगीत निर्देशक और गायक मास्टर कृष्ण राव ने पंडित नेहरू को टेलीग्राम करके एक संगीत विशेषज्ञ के रूप में राष्ट्रगीत के बारे में मेरे विचार लिए जाएं ऐसी विनती की।
1: मास्टर कृष्ण राव फुलम्ब्रीकर। मराठी संगीत नाटक, शास्त्रीय संगीत और नवागत फिल्म संगीत के क्षेत्र के एक बड़े व्यक्तित्व थे। पंडित भास्कर बुआ बखले की सांगीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले मास्टर कृष्ण राव एक प्रयोगशील संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 1936 के आसपास प्रभात फिल्म कंपनी में संगीत निर्देशक के रूप में काम करते हुए वी शांताराम की पहल पर मास्टर ने स्वयं अपनी झिंझोटी राग की रचना प्रभात के स्टूडियो में ही ध्वनिमुद्रित की थी। उस समय के फिल्म संगीत की संगीत रचना के अनुसार

मास्टर कृष्ण राव ने मराठी संगीत नाटकों में बाल गंधर्व के साथ काम किया था। कुलवधु जैसे नए नाटकों को अलग संगीत भी दिया था। संगीत नाटक के अंत में वंदे मातरम गायन की जो परंपरा थी वह संगीत रचना भी मास्टर की ही थी। आगे चलकर छोटा गंधर्व जैसे प्रसिद्ध गायक अभिनेता जयराम और जयमाला शिलेदार परिवार, राम मराठे जैसे गायक अभिनेता अपने संगीत नाटक के अंत में वंदे मातरम का गायन करते थे। छोटा गंधर्व द्वारा संगीत सौभद्र इस नाटक के अंत में नांदा सौख्य भरे इस पद के साथ जोड़कर गाया गया वंदे मातरम का ये ध्वनि मुद्रण आप सुनिए।

0: मास्टर कृष्णराव झिंझोटी राग में निबद्ध वंदे मातरम का गायन अनेक बड़े कार्यक्रमों में करते थे। परंतु आकाशवाणी पर वंदे मातरम गायन की अनुमति नहीं मिल रही थी। अंत में मास्टर कृष्णराव ने सीधे प्रसारित हो रहे आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम में झिंझोटी राग के नाट्य पद को जोड़कर बिना रुके वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। ये ध्यान में आते ही स्टेशन डायरेक्टर बुखारी ने तुरंत विद्युत प्रवाह बंद कर दिया। वंदे मातरम का गायन रोके जाने के विरोध में मास्टर ने आकाशवाणी पर बहिष्कार कर दिया। आगे 10 साल बाद 1947 में चैत्र पाड़वा पर वल्लभ भाई पटेल के निमंत्रण पर आकाशवाणी पर बुखारी की ही उपस्थिति में वंदे मातरम गाकर बहिष्कार वापस लिया। बीच के काल में 1942 के 8 अगस्त को मुंबई के भारत छोड़ो आंदोलन की सभा में मास्टर कृष्णराव ने ही वंदे मातरम गाया था, इसलिए फिर एक बार वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने के लिए मास्टर ने प्रयास शुरू किए।
1: मास्टर कृष्णराव ने पंडित नेहरू को टेलीग्राम किया, उसका उत्तर आया, पंडित नेहरू और अन्य संसद सदस्यों के सामने प्रदर्शन दिखाने की अनुमति मिली। उसकी पूर्व तैयारी के रूप में मास्टर स्वयं पुणे के पुलिस संचालनालय की पुलिस परेड के साथ खुद कदम मिलाकर मार्च पास्ट की दृष्टि से इस संगीत रचना की उपयोगिता को परख रहे थे। दिल्ली में जनरल करियप्पा के सामने और पंडित नेहरू के सामने उसका प्रदर्शन हुआ। मिलिट्री बैंड के प्रमुख लजपत सिंह ने उसे बजाकर देखा और उसकी सफलता की गारंटी दी।

परंतु यह राष्ट्रगीत दुनिया के अन्य देशों के घोष दलों को भी बजाना आना चाहिए। पाश्चात्य संगीत रचना से भी उसकी निकटता हो, ऐसी सूचना मिलने के बाद मास्टर कृष्ण राव मुंबई आए और नायगांव के पुलिस मुख्यालय के ब्रिटिश संचालित घोष विभाग के प्रमुख सी आर गार्डनर के सहयोग से

0: विदेशी पद्धति की स्वर रचना में मूल धुन को धक्का न लगाते हुए घोष पर अभ्यास किया। नेविल बैंड के प्रमुख स्टैनले हिल्स ने ब्रास वाद्यों पर यह संगीत रचना तैयार की। इन दोनों पाश्चात्य संगीत विशेषज्ञों ने मास्टर कृष्णराव की संगीत रचना के बारे में अत्यंत अनुकूल मत और अभिप्राय दिए। इसलिए अत्यंत उत्साह से मास्टर कृष्णराव ने संविधान सभा और पंडित नेहरू से फिर से नए प्रदर्शन की अनुमति मांगी।
1: आसे तु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 47वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयन पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयन पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, वंदे मातरम के दुर्लभ ध्वनि मुद्रण मिलिंद सबनिस जी के संग्रह से साभार, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों पर, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के 4th संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
3: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
2: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
5: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
7: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में
1: आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही

0: मड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
1: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया।
2: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
3: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्ते। ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वक्त से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत बत इस गीत को किया है रवि ने।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
3: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
2: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
4: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रख

0: सदा।
1: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। ऊंचे लोग इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल चित्रगुप्त की बनाई थी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये गीत। फिल्म का नाम है वापस।

0: वेद भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम सबकी जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। बस जरूरत है उस मौके को पहचानने की और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की। तो आइए आज की इस खूबसूरत मुलाकात में कुछ बातें दिल से करें जो दिल तक पहुँचे, कुछ अनुभव साझा करें और शायद उन बातों में से किसी की एक छोटी सी बात किसी दूसरे के दिन को बेहतर बना दे। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ, आपकी आवाज और आपकी बातें इस कार्यक्रम को बनाती हैं खास। तो देखते हैं जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। तो बताइए आप कौन
1: जी।
0: बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मध्य प्रदेश से अंजुम परवीन मंदसौर जिले से।
0: अच्छा, तो अंजुम जी बताइए कुछ अपने बारे में, बताएंगे आप पहले?
1: बस हाउस वाइफ हूँ, घर पे ही रहती हूँ। फिर
0: अच्छा।
1: नर्स का कोर्स कर चुकी हूँ, हॉस्पिटल में सर्विस।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छा ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है परिवार में?
1: जी मम्मी है, बहन है।
0: ये बताइए कि आप मम्मी के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाती हैं कि नहीं, या फिर मम्मी गुस्सा करती हैं?
1: नहीं,
0: जी
1: मम्मी आटा गूंथती है तो रोटी बना देती हूँ, सब्जी मम्मी बनाती है, बर्तन वर्तन कर देती हूँ, कपड़े ये सब
0: ये चीज
1: घर
0: ये
1: पे
0: चीज
1: रहती हूँ तो।
0: ये चीज
1: और
0: तो
1: एक
0: होनी चाहिए।
1: सर्विस करती है तो फिर घर का काम करना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल, और क्या, थोड़ा बहुत हाथ बटाना भी चाहिए वैसे भी, है ना? मम्मी अगर घर का काम कर रही, कोई भी कर रहा हो, चाहे बहनें भी कर रही हो या कोई भी कर रहा हो, तो थोड़ा बहुत हम अगर हाथ बटा देते हैं तो थोड़ा काम आसान हो जाता है और लगता है मम्मी को, हाँ मेरी बेटी देखो मेरे काम
1: जी
0: में हाथ
1: मैम,
0: बटाती
1: जी
0: है
1: मैम।
0: ना। अच्छा बताइए, तो आप आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: जी फिल्म है उस्ताद ही उस्ताद से, और गाना है साथी तेरे नाम एक दिन
0: अरे वाह,
1: जीवन कट जाएंगे।
0: तो चलिए सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ जी मैडम,
0: आज
1: हाँ
0: कौन,
1: बोल।
0: हाँ जी, कौन सी सहेली से मेरी बात हो रही है पहले ये तो बताइए।
1: हाँ मैं मकवाना रमीला बेन बोल रही हूँ,
0: अच्छा
1: इंदरपुरा गांव से।
0: तो बताइए रमीला बेन जी कि आप क्या करती हैं।
1: अभी तो मैं घर पे हूँ, मगर अगली बार फोन लगा, बोला मेरे बेटे का बर्थडे है ना, तो मैं बोली गीत सुना।
0: अच्छा, तो आपके बेटे का बर्थडे आज।
1: हाँ
0: तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी गुड विशेज हैं हमारी तरफ से, शुभकामनाएं हैं आपके बेटे के लिए। तो रमीला बेन जी, जी बताइए। हाँ
1: बेटी का नाम है आरती
0: हाँ अच्छा, आप ये बताइए कि आपके जो बेटी हैं और बेटे हैं, आपके काम में, आपके घर के काम में थोड़ी बहुत हाथ बटाते हैं कि नहीं।
1: अभी लड़की तो मेरी 30 साल की हुई, मगर मन बुद्धि चलती नहीं ऐसी है।
0: अच्छा,
1: और लड़का है ना, वो तो अभी शादी हो गई, लड़की है, सिटी में रहता है, बड़ौदा में
0: अच्छा अच्छा
1: जॉब करती है लड़की की मम्मी,
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: वो लड़का दोनों।
0: ये
1: हाँ
0: बताइए कि आपको कौन सी फिल्म का और कौन सा गाना सुनना है।
1: मुझे दिल का क्या कसूर का या
0: अच्छा
1: कार्तिक का।
0: अच्छा आपकी पसंदीदा हीरोइन का, तो चलिए आपकी
1: हाँ
0: पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से बात कर रही हूँ। राधिका कुर्मी
0: तो राधिका जी ये बताइए कि आप करती क्या है।
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं,
0: पढ़ाई करती हैं। कौन सी क्लास में अभी आप?
1: कक्षा 9th में।
0: 9th में, यानी कि आप अभी
1: जी
0: अभी 10th तक पहुंची नहीं है, तो 10th
1: जी
0: की तैयारी में है ना? तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है?
1: जी जी दीदी, हम दिव्यांग है तो दीदी हम लोग

0: संगीत सीखते हैं तो दीदी वो इसी की तैयारी चल रही है बस। दीदी हम लोग दीदी चित्रकूट में पढ़ते हैं, वो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी है हमारे गुरु,
1: अच्छा,
0: उन्हीं का एक विद्यालय है दीदी कक्षा 12वीं तक, तो वहीं पे पढ़ते हैं दीदी हम लोग।
1: अच्छा, तो संगीत के अलावा आपके पास और कौन कौन से विषय हैं?
0: हम लोगों को संगीत है, बाकी ये है तो हिंदी है, राजनीति विज्ञान है, विज्ञान है, पर मेन जो हम लोगों के सब्जेक्ट रहते हैं दीदी वहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं जैसे जिस चीज का मतलब जिन व्यक्ति का जिस चीज में रुचि होती है दीदी
1: हाँ ये तो
0: वही
1: है।
0: चीज सबसे ज्यादा सिखाते हैं दीदी।
1: अच्छा
0: दीदी सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी वेद भारती टीम को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी जी।
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी
1: तो
0: दीदी
1: बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: दीदी मूवी का नाम है दूध का काज
1: और
0: और
1: गाना
0: गाने के बोल है बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं।
1: ठीक है, तो सुनवाती हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, हम कभी ना बनो, हम कर्नाटक चिकमंगलूर से।
0: अच्छा अच्छा,
1: सबसे भी सखी सहेली, हेलो सहेली, छाया गीत, वो सब सुनती हमें।
0: अच्छा, आपको किसी चीज से डर लगता है क्या? कोई ऐसी चीज हो जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा?
1: नहीं डर लगता।
0: नहीं?
1: क्यों?
0: क्योंकि बहुत सारे लोग, किसी को छिपकली से लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता
1: नहीं,
0: है।
1: नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं, नहीं नहीं डरती मैं।
0: नहीं,
1: मुझसे भी नहीं डरती, छिपकली से भी नहीं डरती,
0: अरे वाह,
1: किसी से भी नहीं डरती सिवाय अल्लाह के।
0: ये तो बहुत अच्छी बात
1: नहीं,
0: है ना।
1: नहीं नहीं डरती, वो
0: क्योंकि
1: डरते ही, वो बहुत जने डरते हैं।
0: हाँ, क्योंकि
1: डरती
0: कभी
1: हूँ,
0: सफाई करते हैं ना घर
1: मुझसे भी
0: में
1: नहीं डरती मैं।
0: जी, है ना।
1: हाँ
0: तो बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, कौन से फिल्म का?
1: आप तो ऐसे न थे। हाँ, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में
0: अरे
1: शक्ति है।
0: वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी पसंद है आपकी।
1: शुक्रिया हमारे फरमाइश की
0: बहुत
1: तरह।
0: बहुत धन्यवाद। हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते सहेली
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी। मेरा नाम शिवाती, गांव घोषगढ़, जिला शामली, उत्तर प्रदेश
0: अच्छा, तो आप ये बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ, घर का काम करती हूँ
0: तो ये बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है, परिवार में?
1: जी। परिवार में मम्मी, पापा, भैया, भाभी, एक भतीजा। हाँ
0: अरे वाह, भतीजे के साथ खेलती हैं आप? अच्छा,
1: जी, अभी तो स्कूल गया।
0: छोटा है कि थोड़ा बड़ा है? बहुत छोटा है कि बड़ा
1: नहीं
0: है?
1: छोटा, अभी तो छोटा ही है। हाँ
0: अच्छा, तो खूब खेलती होंगी फिर तो, मजे आते होंगे ना भतीजे
1: जी।
0: के साथ में खेलने में। अच्छा ये बताइए, आप किसी चीज से आपको डर लगता है? कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा, एकदम चिल्ला पड़ती हो जिसको देख के?
1: छिपकली।
0: छिपकली।
1: हाँ जी,
0: सही बात है ना?
1: हाँ जी। पर भतीजा नहीं डरता है, छोटा सा है, पर वो नहीं डरता,
0: हाँ, वो नहीं रहता। अच्छा, तो ये तो
1: वो
0: अच्छी
1: नहीं
0: बात है
1: डरता।
0: फिर तो। आप जब भी आपको डर लगे ना, तो छिपकली या कॉकरोच निकल आए, तो आप उसको बुला लीजिए, अपने भतीजे को कहिए कि पहले तुम इसको हटाओ फिर हम खेलेंगे।
1: जी वो तो अपने आप आ जाते हैं, झाड़ू लेके फिर खुद से मारते हैं, लेकिन अब बुआ जी आप कर लो जी।
0: अच्छा, तो बुआ जी ये बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी बेटा, फिल्म का गाना सुना है, खुशियों का दिन आया है।
0: चलिए सुनाते हैं आपको आपकी
1: जी
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, तारे
0: तो पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आपके शहर का नाम क्या है।
1: कैसे करे आपकी, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। यानी आपको हमारी बातों में गुलाब की खुशबू आ गई है ना।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, पालदाना का, इंदौर से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हसीना जी। और ये बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं सिलाई करती हूँ मैडम, जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, हसीना जी आप ये बताइए कि आपको ऐसी कोई चीज है जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो।
1: नहीं ऐसा तो कोई चीज नहीं मैडम जिससे डर लगे अपने को।
0: आपको
1: अगर
0: नहीं लगता
1: निडर
0: छिपकली
1: रहेंगे तो,
0: से।
1: अगर अपने सामने कभी खतरा भी आएगा, निडर रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। छिपकली
0: मेरा मतलब था आपको कभी छिपकली से, मेंढक से,
1: से तो बहुत डर लगता है मैडम, हर किसी को
0: यही
1: लगता
0: तो
1: है,
0: मैं
1: और
0: पूछना
1: महिलाओं को तो अधिकतर लगता है, कॉकरोच दिख जाएगा उससे भी डर जाती हो तो।
0: वही मैं पूछना चाह रही थी कि आपको इन सब चीजों से डर लगता है कि नहीं, जो अधिकतर लोगों को लगता है।
1: लगता है ना मैडम, छिपकली ऐसे घर में दिख जाती है तो अपने को लगता है कि अपने ऊपर ही नहीं आ जाए एकदम।
0: बिल्कुल। तो ऐसा कभी होता है कि कभी आप सफाई कर रही हो और अचानक से छिपकली निकल आए, तो आप क्या करती हैं फिर।
1: सफाई करते ना मैडम, अधिकतर तो निकलती है छिपकली, कहीं भी छुपी रहती है वो, तो ऐसे दिखाई नहीं देती, मगर जैसे अपन ने कोई तस्वीर हटाई साफ करने के लिए
0: हाँ
1: तो उसके पीछे तो जरूर रहती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी लगी हुई होती है ना बहुत दिनों से, तो उसको हटाते हुए भी डर लगता है ना कि ऐसा ना हो कि कहीं इसको हम हटाए और इसके पीछे छिपकली हो, है ना, लगता है ना।
1: जी, तो इसके ये ऐसा करने तो मैडम, झाड़ू बड़े वाली रहती है ना जो लंबी वाली, उससे थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे करके खिड़की के बाहर कर देते हैं उसको।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी करने के लिए थोड़ा सा चाहिए कि भाई इतना आपको निडर होना चाहिए कि छिपकली को आप भगा सकें, क्योंकि जल्दी जाती भी नहीं है, कभी इधर छुप जाती है, कभी उधर छुप जाती
1: हाँ,
0: है ना।
1: वो जिधर भगा उधर तो जाती नहीं, वापस अपने तरफ ही आती हो।
0: सच में ना, थोड़ी देर के लिए काम जो हम कर रहे होते हैं ना वो भी बंद हो जाता है ना।
1: जी,
0: तो आप ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं अपनी पसंद का।
1: ये फिल्म का नाम है राम बलराम, और गाने के बोल हैं, अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमका सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे
0: अरे
1: दो। ये
0: आपसे
1: सुना
0: आपसे कोई भूल नहीं हुई है और माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले तो कि आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैम ग्राम कन्यानी घर से कामनी हरवार।
0: अच्छा तो कामिनी जी ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मैम कुछ नहीं कर पढ़ाई करती हैं। मैम
0: पढ़ाई करती हैं?
1: मैम जी कक्षा 7वीं में।
0: अच्छा 7th में आप, यानी कि अभी तो बहुत मतलब अभी आप 10th तक पहुंचने में काफी टाइम है आपको, तो अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए आपको कौन से विषय आपको बहुत ज्यादा पसंद है पढ़ने में?
1: मैम जी हमें, मैम जी कुछ नहीं, खाना बनाए बहुत मजा आता है।
0: खाना बनाना अच्छा लगता है? तो अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम जी पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: कौन सी फिल्म का है?
1: सर्वप्रथम मूवी का।
0: यानी कि आपको फिल्में देखने का और गाने सुनने का बहुत शौक है ना?
1: जी मैम।
0: ठीक है तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं अनुराधा शर्मा बोल रही हूँ, जालना महाराष्ट्र से।
0: तो अनुराधा जी बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है सब।
1: हमारी सासू माँ है, सस्ते है, मेरी दो बेटियां हैं, प्रियंका
0: अच्छा अच्छा
1: अंकिता।
0: अच्छा तो बेटियां बड़ी हैं कि छोटी।
1: हमारे घर वाले राजेश तिवारी,
0: अच्छा
1: अभी एक कॉलेज जाते है, एक स्कूल जाते है।
0: अच्छा है ना।
1: गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आपको,
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ये
1: आपके रेडियो के प्रोग्राम, हमें बहुत खुशी है, आज 20 साल के बाद फोन लगा।
0: अरे वाह, इतने समय से आप कोशिश कर रही थी।
1: ओ हेलो, फरमाइए, सुनते हम
0: अच्छा, और कौन
1: आज
0: कौन
1: के
0: से
1: फन का।
0: कार्यक्रम है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है
1: सखी सहेली,
0: या।
1: हेलो सहेली,
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको गीतों वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जिसमें बातचीत होती है वैसे वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते
1: हाँ
0: हैं।
1: बातचीत वाले जा रहा हूँ उसमें।
0: अच्छा, तो आप जैसे सखी सहेली सुनती हैं आपने कहा, तो उसमें जो रेसिपी वगैरह
1: हाँ
0: या इस तरह की चीजें बताई जाती हैं, तो आप क्या उसको बनाती हैं घर पे।
1: हो, कभी ट्राई कर दे, संडे के दिन आइए आप भी खाने को।
0: और ये तो बताइए आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं।
1: इडली बना दे, हम जा रहे
0: इडली।
1: इडली डोसा।
0: हाँ अरे वाह, इडली डोसा, मतलब ये रहता है ना कि ये एकदम हल्का भी होता है खाने में, सुपाच्य भी होता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है ना, अच्छा होता है
1: ओ
0: खाने
1: सही
0: में।
1: बात है।
0: ये बताइए कि आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: आरती
0: हाँ
1: सुना दिए गणपति बप्पा की।
0: अच्छा, गणपति बप्पा का आपको गीत सुनाते हैं, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: अच्छा, यानी छोटे ही हैं। पढ़ाई तो अभी समय काफी अच्छे से करनी पड़ रही होगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह भी होंगे, है ना? तो ये बताइए, हाँ। आपके दोनों बेटे हैं, तो क्या बेटे काम में कुछ हाथ बटाते हैं घर के?
4: हाँ मैम जी, एक रहता है दुकान पर रहता है, तो हम अपना काम घर पर कर लेते हैं और उसके बाद स्कूल चला जाता है, तो स्कूल से आता है। अच्छा। अभी 2 बजे आएगा गए।
3: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब काम में भी हाथ बटाते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी कि सिंसियर हैं बच्चे। तो ये बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आप थोड़ा बहुत खाली समय में होती हैं, तो आप क्या करती हैं?
4: बस मैम जी, अपन सिलाई का काम करते हैं, गाना सुनते रहते हैं।
3: गाना सुनती हैं। तो ये बताइए, हाँ। आपको कौन कौन से, आप जो विविध भारती सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से इसके कार्यक्रम है अच्छे लगते?
4: तो जब समय पा जाते हैं तब अपन मोबाइल पे चला देते हैं, वही सुनते रहते हैं, सिलाई करते रहते हैं।
3: हाँ, यानी कि आपका जो काम है वो आसान हो जाता है ना करना।
4: हाँ, काम करते रहते हैं, खाना बनाते हैं तब भी चला लेते हैं, सुनते रहते हैं और अपना सुनते रहते हैं।
3: यही तो खूबी है ना संगीत की और विद भारती की, कि मतलब आपका जो काम है उसको आसान बना देता है ना। आप सुनते रहिए उसको और अपना काम करते रहिए, तो पता नहीं चलता है कि हम कितनी देर से काम कर रहे हैं।
4: हाँ, अपना गाना सुनते रहो, अपना काम करते रहो, ठीक।
3: तो ये बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं अपने मन का?
4: मैं जी राजा हिंदुस्तानी का, आए हो मेरी जिंदगी में।
3: अरे वाह, बहुत अच्छा गीत है। तो सुनाती हूं आपको आपकी पसंद का ये।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैडम
0: तो बताइए पहले आप कौन से शहर से बोल रही हैं और आपका खुद का नाम क्या है?
1: जी मैडम, मेरा नाम सीमा सोलंकी है और मैं उज्जैन जिले के गांव ताजपुर से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, आप उज्जैन से बोल रही हैं। उज्जैन यानी कि महाकाल की नगरी भी कहा जाता है जिसे, है ना?
1: उज्जैन का गांव है, ताजपुर कैसा है गांव।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है। आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी मैडम, मैं तो खेती बाड़ी का काम करती हूँ।
0: अरे वाह, खेती बाड़ी का काम करती हैं, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है, समझिए, है ना?
1: हाँ, बहुत मेहनत का काम होता
0: तो मतलब आप सुबह से निकल जाती होंगे, है ना? सुबह जाना होता
1: है।
0: होगा
1: हाँ,
0: आपको।
1: सुबह से खाना वाना बना के, मतलब है घर से खाना वाना बनाने वाला, और भी दो बेटियां हैं।
0: तो बेटियां बनाती हैं, काम करती हैं घर का?
1: हाँ, बेटियां भी मदद करती हैं, और खेत पे आके फिर मजदूर को खाना वाना, उनका चारा निराव पानी करके फिर
0: हाँ,
1: खेत का काम करते हैं।
0: फिर आपको एक चीज होती ना कि वहाँ खेत पे जाकर खाना खाना, सच में ऐसा लगता है ना
1: हाँ, खेत
0: सोच
1: पे
0: के।
1: खाना भी खेत पे ही खाते हैं, मतलब दोपहर का खाना जब
0: हाँ
1: भूख लगती है तो फिर दोपहर को वही खा लेते हैं।
0: हाँ तो वहाँ पे आप खेत में अपना खाना लेकर जाती होंगे, है ना?
1: हाँ, खेत पे कुआ है तो उसमें से पानी आने भर के वही खाना खा लेते हैं।
0: वाह, कितना प्रकृति के पास रह रही हैं आप, सोचिए, ये
1: हाँ
0: भाग्य की बात है एकदम, जो प्रकृति के इतना करीब रहने को मिल रहा है आपको। वैसे भी ना खेत पे जाकर, वहां पे खुले में एकदम खुला खेत है, वहां पे सब फसलें लगी हुई हैं वहां, है ना?
1: बहुत
0: और
1: अच्छा
0: आप
1: लगता है
0: बैठ
1: मैडम
0: के
1: खेत
0: खाना
1: पे
0: खा रहे
1: तो।
0: हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना
1: हाँ, ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे भी हैं और
0: साथ में
1: फसलें भी।
0: आपका रेडियो सेट भी रखा हुआ है या आपके फोन भी आप सुन रहे
1: हाँ,
0: हैं
1: मैं अपने
0: विविध
1: फोन पे
0: भारती।
1: रेडियो भी सुनती हूँ।
0: हाँ, तो
1: हाँ,
0: ये
1: लगी है
0: बताइए कि आपकी बेटियां पढ़ती हैं या?
1: जी मैडम, पढ़ती है अभी, दोनों कॉलेज कर रही है।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत
1: तीन
0: अच्छी बात
1: बेटियां हैं
0: है।
1: मेरी, तो तीनों बेटियां अभी, एक तो स्कूल कर रही है और दो कॉलेज कर रही है। जी,
0: यानी कि घर के काम में हाथ भी बटाती हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी करती हैं।
1: 8 दिन में एक बार कॉलेज जाती है वो।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो बहुत अच्छी बात है, तो पढ़ाई भी करना और साथ में
1: पढ़ाई
0: अपने आप को,
1: भी कर रही है और मदद भी करती है। मेरे
0: नहीं सच में बहुत अच्छी बात है ये।
1: एक बेटा है उसके
0: तो बेटा कुछ करता
1: पापा।
0: है मदद?
1: हाँ, बेटा भी करता है सुबह शाम, वो भी कॉलेज कर रहा है
0: ये
1: और
0: सही बात है,
1: दुकान भी
0: बच्चों को
1: चलाता है।
0: सिखाना भी चाहिए ये सब चीजें कि आप पढ़ाई भी करो साथ में, थोड़ा सा हाथ भी बटाओ,
1: हाँ,
0: तो
1: साथ में
0: उससे
1: थोड़ा
0: जुड़ाव
1: बहुत मदद
0: रहता
1: भी करते
0: है,
1: हैं।
0: बहुत अच्छा रहता है ये।
1: हाँ, और उसके पापा तो है नहीं, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया तो
0: हाँ,
1: बच्चे ही मदद करते हैं।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, सब मदद करते हैं बच्चे आपस में। तो ये बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मैडम, वो चल अकेला मेरा मेला, पीछा छोटा साथी चल अकेला, वो सुनना।
0: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। चल

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो है 400024662 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर्स एक बार फिर से नोट कर लीजिए 4002 4662 और मुंबई का STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867028888 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 2867028888 और मुंबई का STD कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारे जिन भी सखियों का कॉल आज नहीं लग पाया वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाइए और अपनी सखियों को अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है मेरी आवाज में लेखिका नासिरा शर्मा की कहानी दो दीवाने शहर में।

समुंदर पर बारिश हो रही थी, पानी पर पानी की टपकन, श्रुति की देह पर गिरती मूसलाधार बारिश मांसपेशियों में ऐसी तरंग उठा रही थी कि उस राग उस लय को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। क्या पानी को भी ऐसी थिरकन और सिहरन महसूस हो रही है? उसे इस पल शुभम की याद शिद्दत से आ रही थी। उसने वायदा किया था कि इस बार जब बारिश का मौसम आएगा तो वह दोनों उसी तरह वीडियो बनाएंगे जिस तरह फिल्म मंजिल में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने भीगते हुए ये गाना बिना गाए ही महसूस किया था। पलकों पे बारिश, बूंदों के साथ उनके गालों पर बहे आंसू भी, उसके दिल पर छाई घटा बन बरसने लगे थे। उसकी आंखों के पनीले पर्दे पर गानों के शब्दों के साथ शुभम के भीगे चेहरे और उसके हंसते चेहरे की छवि उभरने लगी।

यादों में खोई श्रुति जब भीगती हुई अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ी तो उसे अपनी तरफ ताज्जुब से भरी कई जोड़ी आंखें घूरती हुई नजर आईं। मुंबई की इस बारिश में जिस एहतियात को लेकर लोग यहाँ निकलते हैं वह तो उसने ली ही नहीं। न बदन पर रेनकोट, न हाथ में अम्ब्रेला, वह तो बस अपने में खोई हुई थी। साड़ी से टपकते पानी को देखते हुए उसे ख्याल आया कि वह सीढ़ियां तय करे या फिर लिफ्ट का बटन दबाए। उसे खड़ा देखकर गार्ड ने कहा, मैम लिफ्ट से जाइए, पानी तो साफ हो जाएगा। उसका फ्लैट भी तो 14वीं फ्लोर पर था। उसने धन्यवाद भरी नजरों से गार्ड को देखा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। फ्लैट लेते हुए उसे मैनेजर का कहा एक जुमला अक्सर याद आता है, मैम आप दिल्ली से हैं, दिल्ली वाला कोई बात यहां नहीं चलेगा, ठीक है ना? शुभम ने फौरन कहा था, जी आप निश्चिंत रहें सर, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश से हैं मगर नौकरी के चलते कई शहरों से गुजरना पड़ता है, बस इसीलिए। दोनों को फ्लैट की सख्त जरूरत थी। ऐसी छोटी मोटी बातों को अगर दिल पर लगाकर आदमी हर एक को जवाब देने लगे तो सिवाय एनर्जी वेस्ट के कुछ मिलना नहीं है, इसलिए श्रुति का चौकन्ना होना जरूरी था। अभी यहां आए 6 माह ही गुजरे थे कि शुभम को दुबई का ऑफर आ गया और सैलरी देखकर दोनों ने फैसला लिया कि शुभम को दुबई जाना चाहिए। यदि वहां का वातावरण भाया और श्रुति को भी जॉब करने का चांस मिला तो वो भी दुबई चली जाएगी, वरना शुभम 2 वर्ष का

0: जो समय लगता था उसे थकन भी होती और पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता था। कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में था जहां कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। सड़क की तरफ खुलने वाली केवल इतनी जगह भर थी जहां एसी लगा था और उसे भी लेकर अक्सर वहां झिकझिक होती थी। छोटे शहर के आंगन दालान में रहने वाले ये तीनों लड़के ये सोचकर जी जान से मेहनत कर रहे थे कि इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाकी के दिन अच्छे गुजरेंगे। मगर नेट का पेपर आउट होने की खबर से सबके दिल टूट गए। थका हारा शुभम बोझिल मन लिए जब घर लौटा तो माँ बाप पहले ही खबर सुनकर टूट चुके थे, लेकिन ऊपर से हौसला बनाए हुए थे। जमीन बेचना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें लगा कि इस बार बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें बाप दादा की बनाई जायदाद से एक और टुकड़ा बेचना पड़ेगा। एक दो दिन शुभम उदास रहा, फिर उसने मन बना लिया कि वह खुद काम करेगा और नेट में बैठने का सारा खर्चा खुद अपनी कमाई से पूरा करेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं कर पाया और पिता ही एक मोटी रकम उसको हर माह भेजते रहे। इस बार शुभम का साथ अलग तरह का रहा। जो फ्लैट किराए पर ज्वाइंट मिला उसमें दो लड़कियां और एक।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन हाँ, शुभम के करीब आकर वो बहुत खुश भी थी।

श्रुति खाना पकाते हुए शुभम से बातें कर रही थी और साथ ही उसे खाना पकाने की रेसिपी भी बताती जा रही थी। रात को खाना खाने के बाद श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगी और वह बेचैन हो उठी। इस बार ऐसा न हो, इस बार ऐसा नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगी। फिर उसने शुभम को फोन मिलाया। इधर उधर की बातें कर उसने नर्म आवाज में कहा, शुभम सुनो, हमें लिविंग में रहते हुए कई साल होने को आए हैं, तुम्हें नहीं लगता हमको अब शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी कमाने तो दो, कुछ जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी करना मेरे लिए शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुभम ने कहा। हाँ वो तो है, तो भी हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है और, श्रुति कहती कहती अचानक रुक गई। शुभम बोला, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमारे पास अभी अपना मकान भी नहीं है और न ही हम उन खुशकिस्मत जवानों में हैं जिनके माँ बाप दौलतमंद हैं। मैं यहाँ दुबई आया हूँ, बस ये शहर कमाने और बचत के लिए है। हाँ बात तुम्हारी सही है शुभम, मगर मम्मी पापा शादी को लेकर इतना दबाव डाल रही हैं कि मैं उन्हें जवाब देते देते थकती जा रही हूँ और हमारे आपस के रिश्ते की बात भी उनसे कब तक छुपाती रहूंगी, शुभम ने कहा। ये तो सच है, मेरी जॉब भी रह पाती है या नहीं पता नहीं, पता है यहाँ पर भी छटनी शुरू हो गई है और अपने देश में आकर जॉब कब मिलेगी कब नहीं क्या कह सकता हूँ। हाँ यही सोचकर भी मैं परेशान रहती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, यूँ दिल छोटा नहीं करते, है ना।

फोन रखने के बाद उसे याद आया कि साथ फ्लैट शेयर करने के कारण एक अंडरस्टैंडिंग तो चारों में आ ही गई थी, लेकिन श्रुति और शुभम की सादी दोस्ती धीरे धीरे कर प्रेम में बदल गई। जब दोनों की स्टडी खत्म होकर नौकरी की तलाश शुरू हुई तो उन दोनों को लगा था कि ये तो शिक्षा प्राप्त करने से भी कठिन मरहले से गुजरने वाला मामला है। एक दिन शुभम ने श्रुति से कहा था, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, हम दोनों में से जिसे पहले नौकरी मिलेगी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो नौकरी ले लेगा। हमारे बीच जो संबंध है वो वैसा ही रहेगा। इस बात को लेकर हमारे बीच कोई

गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्रुति? हाँ वो तो ठीक है, तब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या? श्रुति ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर कुछ माह तो हमें अलग रहना पड़ेगा ना श्रुति। ठीक है, श्रुति को शुभम की ये बात अच्छी लगती है कि वह किसी भी तरह की स्थिति के आने से पहले उसकी अच्छी बुरी संभावना पर खुलकर बातें कर लेता है, जिससे उसे व्यवहारिक रूप से बरतने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती है। पहले नौकरी श्रुति को मिली, वह बहुत खुश थी, मगर अकेले जाने में उसे पता नहीं क्यों झिझक सी लग रही थी। शुभम को छोड़ने का उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। जिस तरह संबंध टूट रहे हैं, वैसी कोई दुर्घटना उसकी जिंदगी का भी हिस्सा यदि बन जाएगी तो वो क्या करेगी? उसे तो सचमुच शुभम से प्यार है, उसके घर वाले भी उसके विवाह को लेकर उस पर जोर डालते रहते हैं, बिना ये जाने हुए कि आज विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। पहले की तरह शादी केवल माँ बाप की कर्तव्य अदायगी नहीं है, बल्कि बेटे या बेटी के लिए एक चुनौती जैसी है। कई तरह की जरूरतें हैं, गाड़ी, एमआई, मकान या कमरे का किराया और बहुत कुछ। ये सब जानते हुए भी श्रुति चिंता में डूबी खुद से सवाल करती थी। माना मैंने प्यार को महत्व देने की जगह अरेंज मैरिज पापा और माँ के कहने से कर ली और पति से स्वभाव न मिल पाया तो? कितने ही सवालों, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी है आज हम युवाओं की जिंदगी, सोचते सोचते चकरा जाती श्रुति। लोकल ट्रेन पर बैठी श्रुति परेशान थी। अंत में उसने फैसला लिया कि वह जॉब तो ज्वाइन कर लेती है और देखती है कि आगे क्या होता है। इधर श्रुति नए जॉब के लिए मुंबई आती है और कुछ माह बाद शुभम को दुबई में नौकरी मिल जाती है, और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे दिनों की उम्मीद में फोन पर बात कर लेते हैं।

दुबई की नौकरी कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर दुबई का नाम बड़ा था। शुभम से अपनी लड़की की विवाह करने वाले खुशहाल और दौलतमंद घरानों की लाइन लग गई। छोटे शहरों की मानसिकता विदेश की नौकरी सुनते ही प्रभाव में आ जाती है कि लड़की ऐश करेगी, लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी और आरामदायक रहन सहन होगा। शुभम के माँ बाप इस अचानक आई तब्दीली को देखकर चकित थे कि कल तक तो ये लोग जिस शुभम और शुभम के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते थे, आज सभी चीजों का ऑफर था। बीए पास लड़की, उसके दहेज में मोटर और घर, कोई नई बिजनेस में साझेदारी की बात करता। जब शुभम ये सब श्रुति को हंस हंस कर बताता तो श्रुति की जान निकल जाती। उसको लाख भरोसा हो शुभम पर, मगर शुभम को उसके माँ बाप मजबूर भी तो कर सकते हैं अपनी गरीबी और बलिदान का वास्ता देते हुए, कि इसी दिन के लिए ही तो उसे अपना पेट काट काट कर उसको शिक्षा दिलाई और आधी से ज्यादा पुरखों की जमीन बेच उसकी दिल्ली प्रवास की पढ़ाई का खर्च निकाला। कहीं पर जाकर शुभम भी माता पिता की इस कुर्बानी को लेकर भावुक हो उठेगा और अपनी कस्में देकर पिछला भूलने और प्यार को सदा जिंदा रखने की बात कर उसे हालत की पेचीदगी को समझाएगा, तब वो क्या करेगी। विश्व स्तर पर जो युद्धों के कारण आर्थिक मंदी बढ़ रही है, उस स्थिति में रोजगार मिलना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ ने कई लड़कों की तस्वीरें श्रुति को भेजी थी। उनके कहने के अनुसार उसने नेट पर चेक किया भी, उसे उन लड़कों का परिवार और नौकरी शुभम से अच्छी स्थिति की लगी। जो देखने में भी शुभम से ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, मगर प्यार, प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। उसने अपने मन की उलझन अपनी दोस्त रेखा को बताई तो वह पहले गंभीरता से उसकी परेशानी सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन सखी, ये प्यार नहीं केवल आकर्षण है, कल ये दम तोड़ देगा। हाँ, अरे इतने वर्ष तुम दोनों साथ में रहे, जो जीना था वह तुमने जी लिया, आगे जादू नहीं यथार्थ होगा। जीवन की ठोस सच्चाइयां हमारा समय ठहरने का नहीं चलने का है, समझी तुम। श्रुति ये सब सुनकर अचकचा गई, बोली, देखा तुम कहना क्या चाह रही हो। अरे छोड़ शुभम को और आगे बढ़, देख रही है तीनों ऑफर कितने बढ़िया हैं, जो उसे दिल ना मिला और शुभम के लिए मन बेचैन रहा तो। एक जॉब से दूसरी जॉब हम छोड़ते पकड़ते हैं, रोज नए रेस्टोरेंट में लंच लेते हैं, फिर फिक्स लाइफ तुमने जी ली एक अच्छे इंसान के साथ इतने साल, तुम्हें क्या पता कि इनमें से जिससे शादी करो वो शुभम से भी बेहतर हो और शुभम को तुमसे बेहतर लड़की मिल जाए, क्या पता। रेखा की बात सुन श्रुति सन्नाटे में आ गई, उसने चकित हो रेखा को देखा और नजरें झुका ली। क्या सोच रही हो, रेखा हंसने लगी, जो शादी के बाद पति से बेहतर कोई मिल गया तो। अब तब की तब देखी जाएगी, अगर हम तब तक जिंदा बचे। अजीब बात कर रही हो, अजीब तो ये समय है जिसमें हम जी रहे हैं, हर तरफ आग लग रही है, सड़क धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इंसान कैसे इन आपदाओं के प्रभाव से बचा रहेगा, इंसानी जीजी विशा। वही तो मैं कह रही हूं, समय के साथ चलो, जो बेहतर लगे उसे अपना लो, छूटे को भूल जाओ, रेखा ने कहा। ये सच कुछ लोगों का हो सकता है, मगर सबका नहीं रेखा, मेरा तो कतई नहीं। तो फिर जो जैसा है उस पर सवाल क्यों, रेखा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा और लैपटॉप पर झुक गई। उसकी बातों का असर श्रुति पर यह पड़ा कि उसके जहन के जाले साफ हो गए और वह तय करके अपनी सीट पर से उठी कि जो सामने आएगा उसका इंतजार करना ही अच्छा रहेगा और दूसरों की राय और जिंदगी को देखकर कोई फैसला लेना बेवकूफी होगा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है।

पता नहीं नक्षत्रों का कमाल था या अपने अंदर उमड़ते प्रश्नों का हल ढूंढने का समय था। शुभम पर शादी का जोर बढ़ा तो उसने माँ को मन की बात फोन पर बता ही दी कि मेरी पसंद की एक लड़की है, मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूँ, वो हमारे परिवार में रचने और बसने के लायक है माँ। माँ कुछ बोली नहीं, चुप्पी साध गई, मगर फोन काटा नहीं। शुभम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इतना कमा लूंगा माँ और तब मेरे लिए कार, बंगला, खेत, बाग खरीदना कोई कठिन काम नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हारी पसंद की बहू बनकर घर आए तो मैं राजी हूँ माँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि मैं दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। हाँ, और सुनो माँ, मैं श्रुति का चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ की सुस्त सी आवाज जब शुभम को पड़ी तो उसने प्रणाम कर फोन काट दिया और आराम से कुर्सी पर कुछ इस तरह हल्का होकर बैठा जैसे दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो।

0: शुभम बोझ से आजाद हो गया था, मगर श्रुति अभी भावना और व्यवहारिक यथार्थ में जहनी तौर पर उलझी हुई थी। शायद इसलिए भी कि जब वो लिविंग में रह रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड मैरिज करने में झिझक कैसी, उसके बाद भी तो साथ फेरे लिए जा सकते हैं जब दोनों के माँ बाप इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। कम से कम इस टेंशन से तो मुझे निजात मिल जाएगी, खुद से वो लंबे लंबे संवाद करती, परंतु जब शुभम से बात करती तो उसके सारे प्रश्न उसके प्रेम भरे संबोधन से पिघल जाते थे। पिछले 3-4 दिनों से वह हिम्मत जमा कर रही थी कि माँ से बता दे कि उसकी पसंद का लड़का है और वह उसी से विवाह करेगी, वरना जीवन भर कुंवारी रहेगी। शाम को जब माँ का फोन आया कि वह दिवाली की छुट्टियों में आ जाती ताकि लड़के वाले उसे देख लेते और वह भी लड़के से मिल लेती, ये बात सुनकर अचानक श्रुति के मुंह से पहले का सोचा हुआ वाक्य निकल गया। माँ को सदमा सा लगा और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कड़वा कह दिया, जिसे सुनकर पहले श्रुति चुप रही, मगर जब माँ ने ये कहा, ये शादी नहीं हो सकती और तुम भी फौरन नौकरी छोड़कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हें लेने भेज रही हूं, तब श्रुति ने तेज आवाज में कहा, क्यों माँ, दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया है तो फिर मुझ पर प्रतिबंध क्यों लगा रही हो, बोलो माँ, शायद तुम भूल चुकी हो कि मुझको कानून ने इजाजत दे रखी है, मेरी उम्र को मत भूलना तुम। माँ ने फोन गुस्से से पटक दिया। श्रुति की सांसें तेजी से चलने लगी और वह बड़बड़ा उठी, बचपन से माँ मुझे कभी भाइयों को तो कभी पिता के आतंक से धमकाती रहती, पर अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब और कुछ नहीं। उसने तूफान को पार कर लिया था, भावनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था, क्रोध आंसुओं में ढल गया और ठीक उसी तरह वह सुबक सुबक कर रोने लगी जब माँ उस पर पहरे पिटाती थी।
1: अब और नहीं होगा माँ,
0: दो दिन तक उसने किसी को फोन नहीं किया। तीसरे दिन अचानक शुभम का मैसेज आया, सरप्राइज, मेरी तरक्की के साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मैं फैमिली साथ रख सकता हूं श्रुति। मैसेज पढ़कर श्रुति खुश हुई और जवाब लिखने ही जा रही थी कि उसके ईमेल और व्हाट्सएप पर हवाई टिकट की डिटेल भी आ गई। पढ़कर चकरा गई, समझ नहीं पाई, तभी फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर शुभम का हंसता हुआ चेहरा उभरा, हाय, तैयार रहो, मैं लेने आ रहा हूं, यहां 3 दिनों की छुट्टी है, तुम स्कूल से छुट्टी ले लो।

0: छुट्टी ना मिले तो स्कूल से रिजाइन कर दो। हाँ, हमारा यहाँ फ्लैट बेहद खूबसूरत और आरामदायक है। ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे। फोन बंद हो गया और श्रुति समझ नहीं पाई कि यह सब सुनकर कैसे रिएक्ट करे। उसने टिकटों की तारीख देखी। शुभम के आने की तारीख कल की थी और उन दोनों की उड़ान की परसों दोपहर की थी। श्रुति के बदन से तनाव अपनी जगह छोड़ रहा था और आराम उसकी मांसपेशियों को थपक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, वो भी अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी मुश्किल के। ये सोचते हुए वो मन ही मन बहुत खुश हुई।
1: दो दीवाने शहर में।

शुभम जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, आंखों में चमक थी। श्रुति को सीने से लगा हुआ बोला, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है श्रुति। हाँ, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है ना श्रुति? बाहर बादल घिरे हुए थे, मुंबई की बारिश का मौसम। उठो, चलो उठो, बाहर चलते हैं, शुभम ने कहा। अरे अभी बाहर? अरे अभी तो पैकिंग बाकी है, श्रुति ने कहा। चलो ना, चलो तो श्रुति। दोनों फुहारों में भीगते समंदर के किनारे पहुंचे। जी भरकर नहा लो, दुबई में बारिश नहीं होती है, शुभम ने कहा। और श्रुति के मन पर छाए बादल अचानक बरस पड़े और दोनों हंसने लगे।

गीतों भरी कहानी में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी कहानी दो दीवाने शहर में। वाचक स्वर था मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का। संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं।
5: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 5 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपके रेडियो दोस्त और होस्ट डिंपल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे आपके आसपास जो है कई जुलूस निकल रहे होंगे, क्योंकि आज जो है सभी गणपति बप्पा को जो है विदा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो है अनंत चतुर्दशी है और ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है जो हमें खुशी भी देता है और हमें रुला भी देता है। दोस्तों, त्यौहार सिर्फ हमारी खुशियों और आस्था से जुड़े नहीं होते, बल्कि वे हमें प्रकृति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की याद भी दिलाते हैं। और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है अनंत चतुर्दशी, जो गणेश उत्सव के समापन का भी प्रतीक होता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं और अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना के साथ उन्हें विदाई देते हैं और कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दिया। दोस्तों, गणेश उत्सव के दौरान घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणपति की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। कई दिनों तक पूजा अर्चना, भजन आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भर जाता है और फिर आता है वो भावुक पल जब भक्त गणपति बप्पा को विदाई देते हुए विसर्जन के लिए निकलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस आस्था के साथ हमारी एक जिम्मेदारी

जुड़ी हुई है, और वो ये कि हमारी नदियाँ, तालाब और दूसरे जल स्रोत जो हैं स्वच्छ रहें। अक्सर देखा जाता है कि विसर्जन के बाद मूर्तियों के अवशेष, सजावट की सामग्री और अन्य कचरा जल में रह जाता है। अगर प्रतिमा बनाने में ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है जो पानी में आसानी से नहीं घुलते या हानिकारक रंगों से रंगे गए हैं, तो इससे जल की गुणवत्ता और जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इस अनंत चतुर्दशी पर क्यों ना आप सभी और हम सभी अपनी आस्था को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ जोड़ें। अगर संभव हो तो मिट्टी या फिर प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनी गणपति प्रतिमा को ही आप प्राथमिकता दें, और ऐसे प्रतिमाओं और प्राकृतिक रंगों का चुनाव पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद ज़रूर करता है। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि गणपति विसर्जन के लिए किसी भी तालाब, नदी या झील में मूर्ति को मनमाने ढंग से नहीं फेंकना चाहिए। स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाए गए निर्धारित विसर्जन स्थल या फिर कृत्रिम विसर्जन कुंड या अन्य निर्धारित व्यवस्था का ही उपयोग करना चाहिए। इससे जल स्रोतों में कचरा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। ज़रा सोचिए कि जिस प्रकृति से हमें मिट्टी मिली, पानी मिला, हवा मिली, उसी प्रकृति को हम अपने उत्सव के बाद गंदा छोड़ दें, तो क्या यह हमारी आस्था की भावना के अनुरूप होगा? नहीं ना। भगवान गणेश को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, तो इस पर क्यों ना हम उनके उत्सव को पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक कदम बनाएं। पूजा की सामग्री को भी जल में फेंकने की बजाय स्थानीय व्यवस्था के अनुसार अलग से एकत्र किया जा सकता है। फूल पत्तियां जैसी प्राकृतिक सामग्री के लिए भी यदि स्थानीय निकाय द्वारा कंपोस्टिंग या फिर संग्रह की व्यवस्था हो तो उसका उपयोग किया जा सकता है। और सजावट में प्लास्टिक और ऐसी सामग्री का इस्तेमाल कम करना भी एक अच्छा कदम हो सकता है। फ्रेंड्स, पर्यावरण संरक्षण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि त्योहारों की खुशियां कम हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हमारी खुशियां किसी दूसरे के लिए परेशानी बिल्कुल नहीं बने और हमारी आस्था प्रकृति के लिए नुकसान का कारण नहीं बने। तो इस बार जब आप गणपति बप्पा को विदा करने जाएं, तो सिर्फ एक बात याद रखिए कि बप्पा को विदाई दें लेकिन प्रकृति को परेशानी बिल्कुल नहीं। गणपति की प्रतिमा को जल स्रोतों में लापरवाही से बिल्कुल नहीं फेंकें। निर्धारित विसर्जन स्थल का इस्तेमाल करें और पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा, इको फ्रेंडली जो है प्रतिमा आप चुनें, और प्लास्टिक और अन्य कचरे को भी जल में जाने से रोकें, क्योंकि हमारा त्यौहार तभी और खूबसूरत बनेगा जब उसके बाद भी हमारी नदियाँ साफ होंगी, हमारे तालाब स्वच्छ होंगे और उनमें रहने वाले जलीय जीव भी सुरक्षित रहेंगे। तो इस अनंत चतुर्दशी पर आप सभी एक संकल्प लें कि आस्था भी रहे और उत्सव भी रहे, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर बिल्कुल नहीं। प्रकृति की रक्षा जो है हमारी जिम्मेदारी है। त्यौहार मनाइए, खुशियां बांटिए और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ ही अपनी धरती, अपने जल और अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखिए। तो इसी के साथ आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं गणपति पप्पा का ये प्यारा सा गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: तो दोस्तों, बात करते हैं अगली चर्चा की। दोस्तों, अब चर्चा जो है एक ऐसे विषय पर है जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के विकास की बात नहीं करता, बल्कि समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने की बात करता है जो शायद सबसे पीछे रह गया हो। दोस्तों, आज है 25 सितंबर और हम बात कर रहे हैं अंत्योदय दिवस की। जी हाँ दोस्तों, अंत्योदय यानी अंत में खड़े व्यक्ति का उदय। सरल शब्दों में कहें तो समाज की प्रगति का वास्तविक अर्थ तभी है जब विकास का लाभ उस व्यक्ति तक भी पहुंचे जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और हर साल 25 सितंबर को यानी आज ही के दिन अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय जनसंघ के प्रमुख विचारक और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि हम अक्सर विकास को बड़ी बड़ी इमारतों, चौड़ी सड़कों, नई तकनीक और आर्थिक प्रगति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या विकास की तस्वीर तब पूरी मानी जा सकती है जब किसी गांव में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित हो, किसी परिवार को स्वास्थ्य सुविधा न मिल पाए या किसी व्यक्ति के पास अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के साधन नहीं हो? और यहीं से अंत्योदय की भावना सामने आती है। दोस्तों, अंत्योदय हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि समाज में जो व्यक्ति सबसे कमजोर स्थिति में है उसके जीवन में सुधार कैसे लाया जाए, यानी विकास की शुरुआत उस व्यक्ति से हो जो विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट गया हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन भारतीय समाज, संस्कृति और मानव केंद्रित विकास की अवधारणा से जुड़ा था और उनका एकात्म मानववाद व्यक्ति को केवल आर्थिक इकाई के रूप में ही नहीं देखता, बल्कि उसके शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा, इन सभी पक्षों के संतुलित विकास की बात करता है। और अगर हम आज के समय से इसे जोड़कर देखें तो ये विचार और भी

महत्वपूर्ण लगता है। दोस्तों, आज हमारे पास टेक्निक है, इंटरनेट है, डिजिटल शिक्षा है और ऑनलाइन सेवाएं भी है, लेकिन क्या हर व्यक्ति इन सुविधाओं तक समान रूप से पहुंच पा रहा है? शायद नहीं। शहरों में रहने वाला कोई युवा कुछ ही मिनटों में इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन किसी दूर दराज के गाँव में रहने वाले व्यक्ति के लिए वही सुविधा उतनी आसानी से उपलब्ध हो, ये ज़रूरी नहीं। इसलिए अंत्योदय हमें केवल सुविधाएं बढ़ाने की नहीं, बल्कि सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने की सोच भी देता है। सरकार की अनेक योजनाओं का उद्देश्य भी समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्गों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएँ भी पहुँचाना है। लेकिन किसी भी योजना की वास्तविक सफलता केवल उसके बनने से नहीं, बल्कि उसकी सही लाभार्थी तक पहुंचने से होती है, और यहाँ समाज की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, अंत्योदय केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब अपने स्तर पर भी इस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं अगर हम किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, तो यह भी अंत्योदय की भावना है। अगर हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी सरकारी सेवा या डिजिटल प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं, तो ये भी अंत्योदय ही है। अगर हम अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सम्मान के साथ अवसर देने की कोशिश करते हैं, तो ये भी अंत्योदय की दिशा में एक कदम है, क्योंकि मदद केवल आर्थिक नहीं होती। किसी को समय देना, सही जानकारी देना, उसका जो है आत्मविश्वास बढ़ाना और उसे सम्मान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और शायद यही अंत्योदय की सबसे खूबसूरत बात है कि विकास केवल ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी के लिए भी अंत्योदय का संदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। युवा केवल अपनी करियर और व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अपने आसपास के समाज को भी देखें, अपने ज्ञान, तकनीक और प्रतिभा का इस्तेमाल सामाजिक बदलाव के लिए करें। आज का युवा किसी बच्चे को पढ़ा सकता है, किसी बुजुर्ग को डिजिटल भुगतान सिखा सकता है और पर्यावरण संरक्षण में योगदान भी दे सकता है। साथ ही रक्तदान या फिर कोई भी सामाजिक सेवा, इन जैसी गतिविधियों में भाग ले सकता है और सबसे ज़रूरी, अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील भी रह सकता है, क्योंकि एक मजबूत समाज वही होता है जहां सफलता केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहे। तो इस अंत्योदय दिवस पर हम सभी को जो है विकास को एक नए नज़रिए से देखना चाहिए। अपने आप से एक सवाल पूछें कि मेरे आसपास ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस थोड़ी सी जो है मदद, सही जानकारी या फिर एक अवसर की ज़रूरत है। हो सकता है हमारी छोटी सी कोशिश जो है किसी के लिए बहुत बड़ा बदलाव बन जाए। हाँ, अंत्योदय का मतलब केवल किसी को आगे लाना नहीं, बल्कि उसे इस तरह सक्षम बनाना भी है कि वो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किसी ज़रूरतमंद को हमेशा मदद का हाथ देना भी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बेहतर है उसे ऐसा अवसर देना जिससे वो स्वयं अपने भविष्य का निर्माण कर सके, और यही तो सशक्तिकरण है ना दोस्तों। यही समावेशी विकास की भावना भी होती है और यही अंत्योदय के विचार की मूल भावना से जुड़ता है। तो उस अंत्योदय दिवस के अवसर पर आप सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने आसपास किसी व्यक्ति को केवल उसकी परिस्थितियों के आधार पर कमतर नहीं समझेंगे, क्योंकि समाज की असली ताकत इस बात में नहीं है कि उसमें कितने लोग आगे हैं, बल्कि इस बात में है कि पीछे रह गए लोगों को आगे लाने के लिए कितने लोग हाथ बढ़ाते हैं। हमेशा याद रखिए कि जब विकास की रोशनी समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचती है, तभी विकास वास्तव में सार्थक बनता है। तो इसी के साथ आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और आइए

बात करते हैं हमारी अगली चर्चा की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे समाज के वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, और वो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास करने में युवाओं की भूमिका। साथियों, विकास का मतलब केवल बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, आधुनिक तकनीक या आर्थिक प्रगति बिल्कुल नहीं है। वास्तविक विकास तब माना जाएगा जब समाज के उस व्यक्ति तक भी विकास की सुविधाएं पहुंचे जो किसी कारणवश अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक या फिर अन्य जरूरी सुविधाओं से दूर है। हम अक्सर कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन वास्तव में युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि आज की शक्ति भी है। युवाओं के पास ऊर्जा है, नई सोच है, तकनीक का ज्ञान है और बदलाव को स्वीकार करने का साहस भी है। इसलिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने में युवाओं की जो है भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर युवा ये भूमिका निभा कैसे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले और महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि शिक्षा के प्रसार में वो अपना योगदान दें। आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। ऐसे में युवा अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाने, उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने और शिक्षा के महत्व को समझाने में योगदान दे सकते हैं। किसी बच्चे को किताब उपलब्ध करवाना, उसे पढ़ने में मदद करना या फिर डिजिटल माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाना भी एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप डिजिटल जागरूकता का प्रसार करें। आज सरकारी सेवाओं से लेकर शिक्षा, बैंकिंग, रोजगार तक कई सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन हर व्यक्ति डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं जानता। युवा अपने परिवार, गांव, समुदाय के बुजुर्गों और ज़रूरतमंद लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना सिखा सकते हैं। किसी को ऑनलाइन आवेदन भरना समझाना हो या फिर डिजिटल भुगतान के बारे में बताना हो या फिर किसी सरकारी योजना की जानकारी देना हो, युवा इनमें सहयोग कर सकते हैं। और इसी तरह स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में भी युवा जागरूकता फैला सकते हैं। गांव या मोहल्ले में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कार्यक्रम, रक्तदान शिविर या फिर पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। रोजगार और कौशल विकास भी इस दिशा में बेहद जरूरी है। दोस्तों, युवा स्वयं नए कौशल सीखें और दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करें। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्वरोजगार की संभावनाओं की जानकारी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना भी विकास की प्रक्रिया को मजबूत करता है। इसी के साथ आइए आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये गीत।

तो दोस्तों अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए हमारे युववाणी कार्यक्रम से। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। मैं हूं आज आपके साथ आपके रेडियो सखी और आज के इस कार्यक्रम की सूत्रधार संगीता सिखवाल। मेरे सभी श्रोताओं का, सभी सखियों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं इस बेहतरीन प्रोग्राम में। श्रोताओं, आज संपूर्ण विश्व भर में फार्मासिस्ट दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन प्रतिवर्ष 25 सितंबर को दुनिया भर के स्वास्थ्य सेवा में फार्मासिस्टों के योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। सखियों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन द्वारा की गई थी। श्रोता साथियों, आपको बता दें कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना 25 सितंबर 1912 को हुई थी। सन 2009 से आधिकारिक तौर पर 25 सितंबर को ही विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही ये भी जान लीजिए कि वर्ष 2020 से इसे विश्व फार्मेसी सप्ताह के रूप में भी मनाया जाने लगा, ताकि इस पूरे पेशे के योगदान को विस्तार से सराहा जा सके। हर वर्ष इस दिवस की कोई खास थीम होती है। इसी कड़ी में इस बार यानी कि साल 2026 की थीम है, स्वस्थ भविष्य के लिए फार्मासिस्टों को सशक्त बनाना। आइए जानें क्या है इस दिवस को मनाने का महत्व। तो श्रोता साथियों, सर्वप्रथम तो ये दिन सुरक्षित दवा उपयोग, रोगी की देखभाल और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में फार्मासिस्टों के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करता है। साथ ही ये दिन स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में फार्मासिस्टों की सलाह, अनुसंधान और जन स्वास्थ्य सुरक्षा के कार्यों को उजागर करता है। तो ये थी कार्यक्रम की शुरुआती चर्चा आज की बात में। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा इस कमर्शियल ब्रेक के लिए।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन आपके मन पसंद कार्यक्रम महिला जगत में। सखियो, आज है विश्व फेफड़ा दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड लंग्स डे। प्रतिवर्ष इस दिवस को 25 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2013 में फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज द्वारा की गई थी। सखियो, लंग्स स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने और सांस से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आज विश्व भर में ये दिवस जीवन भर स्वस्थ फेफड़े यानी कि हेल्दी लंग्स फॉर होल लाइफ थीम के साथ मनाया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस दिवस का क्या क्या महत्व हो सकता है। तो सखियो, सबसे पहले इससे बीमारियों की पहचान होती है। कैसे? जैसे अस्थमा, COPD, TB और निमोनिया जैसी सांस की गंभीर समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा रोकथाम के कई उपाय हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, धूम्रपान और हानिकारक धूल से लंग्स को होने वाले नुकसान के प्रति सचेत करना। इसका एक महत्व इस दिवस को मनाने का ये भी हो सकता है कि स्वस्थ जीवन शैली, कैसे लोगों को जीवन के हर चरण में, चाहे वो किसी भी उम्र का है, अगर वो बाल्यावस्था में है, एक एडल्ट एज में है या ओल्ड एज में, आप किसी भी कंडीशन में, आप किसी भी एज में हो, आपको अपने लंग्स की देखभाल सही से करनी चाहिए और हर संभव सही कदम उठाने चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रह सके, आपके फेफड़े स्वस्थ रह सके और आप इस वर्ल्ड लंग्स डे को अच्छे से समझ सके। और इसका जो सरकार का, हम सभी का उद्देश्य है कि ये हमारे समाज में मनाया जाना चाहिए, तभी ये इसका सार्थक होगा। तो ये थी हमारी चर्चा आज वर्ल्ड लंग्स डे के बारे में। और अब आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं सुखविंदर सिंह और अनुप्रिया चटर्जी की आवाज में फिल्म 72 आवर्स से ये गीत।

आप सुन रहे हैं चिरमी चैनल का एक बेहद खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है महिला जगत। और आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी संगीता सिखवाल। सखियो, आज के इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाली हूँ विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, जी हाँ, जो कल मनाया जाएगा। लेकिन कल हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, यानी महिला जगत नहीं होगा, तो क्यों ना आज ही आपसे चर्चा कर ली जाए। सखियो, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। बहनों, इस दिवस को मनाने का मकसद पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंधों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। ये दिन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि जल और वायु प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मुद्दे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कितने जरूरी हैं। इस दिवस की आधिकारिक शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य संघ द्वारा 26 सितंबर 2011 को की गई थी। इस दिवस को मनाए जाने का मूल सारांश है स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन। जी हाँ, अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, साफ सुथरा सुंदर होगा, तो हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य वैसे भी स्वस्थ होगा। दिवस का महत्व ये है कि ये दिवस खासकर पर्यावरणीय चुनौतियाँ जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा जैसे अपशिष्ट प्रबंधन और जन स्वास्थ्य के ऊपर उनके प्रभावों पर प्रकाश डालता है। तो ये थी हमारी बड़ी ही शॉर्ट सी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर। कार्यक्रम में अगली कड़ी में बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा इस अल्प विराम के लिए।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत। सखियों, आज एक बहुत ही खास धार्मिक उत्सव चारों तरफ दिखाई दे रहा है, मनाया जा रहा है। जी हाँ, आज है अनंत चतुर्दशी का पर्व। आज है शुक्रवार 25 सितंबर 2026 को ये मनाया जा रहा है और इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और गणेश विसर्जन के साथ गणेशोत्सव का समापन होता है। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो विशेषकर आपसे करना चाहती हूँ कि आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और इसमें पूजा का एक निश्चित अभिजीत मुहूर्त भी है जो चल रहा है। उसके साथ ही इसमें पूजा की एक विशेष विधि होती है, स्नान होता है, संकल्प होता है, भगवान विष्णु की स्थापना की जाती है। जी हाँ, घर के मंदिर में कलश स्थापना कर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखा जाता है और पीले फूल, फल, दुर्वा और मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। अनंत सूत्र यानी कि डोरा बांधा जाता है। जी हाँ श्रोताओं, सूती या रेशमी धागे में कुमकुम, हल्दी लगाकर 14 घंटे लगाई जाती है जिसे अनंत सूत्र कहा जाता है और आज के दिन उद्यापन भी काफी प्रसिद्ध है। आज आप जगह जगह सुन सकते हैं कि पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ में इस सूत्र को बांधते हैं यानी अनंत सूत्र को बांधते हैं और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। आज गणेश विसर्जन किया जा रहा है क्योंकि पिछले 10 दिवस से जो हमारे उत्सव चल रहा है, गणेश जी विराजमान होते हैं हमारे घरों में, मंदिर में, धार्मिक स्थलों पे, तो गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। आज उसका समापन है। भक्त गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। तो आप सभी को भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, ढेरों बधाइयां देते हैं आज के इस अनंत चतुर्दशी त्यौहार की। तो ये थी हमारी चर्चा। अब आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसे हमने चुना है फिल्म दंगल से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत। सखियो, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, ये दिवस भी कल मनाया जाएगा यानी 26 सितंबर को, विश्व गर्भ निरोधक दिवस। सखियो, विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि गर्भ निरोधक विधियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। ये दिवस पहली बार 26 सितंबर 2007 को मनाया गया था। सखियो, गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन वह तरीका या साधन है जिसका इस्तेमाल अनचाही गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है। इसे बर्थ कंट्रोल भी कह सकते हैं। इसका क्या महत्व है जानते हैं। श्रोताओं, ये दिन युवाओं और आम जनता को सुरक्षित यौन संबंध तथा अपने परिवार के आकार के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम का रेगुलर टिप, जो एक सेगमेंट रहता है ब्यूटी टिप्स, जिसमें आज लेकर आई हूँ डार्क सर्कल्स, समस्या और समाधान। सखियो, डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे के काले घेरे, हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, कई लोगों के देखते भी हैं, तो हमें बड़ी चिंता सताती है। तो चलिए आज आपकी चिंता खत्म करते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए और आपसे डिटेल में इस बारे में चर्चा करते हैं। सखियो, इस जो ये डार्क सर्कल की जो प्रॉब्लम होती है आंखों के नीचे, जो काले धब्बे, काले घेरे, कुछ भी बोल सकते हैं इनको, ये कई कारण से ये समस्या हो सकती है हमारी आंखों में, जैसे कि नींद की कमी होना, तनाव होना या पोषण की कमी होना, या कभी कभी जेनेटिक्स, ये भी इसका कारण होता है। इसका समाधान, ये अगर एक सेंटेंस में बोलूँ तो, सही जीवन शैली, घरेलू उपाय और मेडिकल ट्रीटमेंट से ये एकदम सही हो सकता है। फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। सखियो, सबसे पहला जो और प्रमुख जो कारण है वो है नींद की कमी। ठीक से न सोने से आंखों के नीचे की जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो फैल जाती है और स्किन के अंदर की नर्व्स साफ दिखाई देने लग जाती है और इसी वजह से हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्क्रीन टाइम, आजकल ये बहुत बड़ी परेशानी है कि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स को, और लगातार मोबाइल देखते हैं। मोबाइल या लैपटॉप पर ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, आँखों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हमें आँखों पर बहुत ज़्यादा, हमारी आँखों पर जोर पड़ता है और हमारी आंखों की थकान बढ़ती जाती है और जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा तनाव और थकान, मानसिक तनाव के कारण भी शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जिससे त्वचा डिहाइड्रेट होती है और डार्क सर्कल बन जाते हैं। और कभी कभी, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में यानी कि जेनेटिक्स भी ऐसा करवाते हैं, ये समस्या आनुवंशिक भी हो सकती है। जन्म से ही आंखों के नीचे की त्वचा पतली होती है और कभी कभी हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि आयरन, विटामिन सी, के और B12 की कमी के कारण भी ये डार्क सर्कल हो जाते हैं। और एक और कारण भी है कि हमारी बढ़ती उम्र, अगर हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारी स्किन पतली और कमज़ोर होती है, तो उसके और लूज भी होती है और उसकी वजह से हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल बढ़ रहे हैं। तो हमें कुछ छोटे छोटे हम घरेलू ट्रीटमेंट अपना सकते हैं, जैसे प्रॉपर नींद लें, खूब सारा पानी पिएं, हेल्दी डाइट लें, योगा प्राणायाम करें और अपनी स्किन को टोन करते रहें और अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखें, धूप में कम घूमें और जब भी धूप में या कोई ऐसी जगह आपको जाना हो जहां बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो तो आप अपनी स्किन को, अपने

चेहरे को कवर कीजिए। और अगर ये मामला जेनेटिक्स है, आप पता लगाइए कि आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छे से सॉल्यूशन अवेलेबल है। और अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सभी की बढ़ती है और उम्र के साथ ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी। तो ये थी हमारी आज के कार्यक्रम की अंतिम चर्चा जो थी सखियों के लिए ब्यूटी टिप्स। अब आपको लिए चलते हैं फिल्म से एक बहुत सुरीले गीत की ओर, और ये गीत है फिल्म ताल से, इसे गाया है आशा भोसले और आदित्य नारायण ने।

अभी आप सुन रहे थे महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियां और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए GI टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की 1 मीट्रिक टन खेप को रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के GI टैग वाले कृषि

0: उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना है। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण 9 रजत और 11 कांस्य समेत 22 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म टू स्टेट्स के इस गीत के साथ, जिसमें आवाजें हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की।

फिल्म ABCD 2 के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। शाम के 6:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपके लिए हरिनारायण शास्त्री की आवाज़ में।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: माटी के स्वर कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गणपत लाल दमामी की आवाज में ये अगला लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। शाम के 6:30 हो रहे हैं, कुछ ही पलों बाद

आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का संकल्प सभी के योगदान और भागीदारी से ही साकार हो सकता है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने विकास योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अहम बताया। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर निर्वाचित हुए और अनंत चतुर्दशी पर्व पर प्रदेश भर में शोभा यात्राएं और गणपति विसर्जन के कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का संकल्प सभी के योगदान और भागीदारी से ही साकार हो सकता है। श्री मोदी ने आज सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की राह में कई चुनौतियां हैं, इसके लिए हमें हर दिन नई ऊर्जा और सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण का काम करना होगा।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं, इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए सेवा, संतुलन, संयम और समन्वय सहित सात सूत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने इन सूत्रों को सेवा यात्रा की आत्मा बताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नबीन ने कहा है कि भाजपा की नीति अंत्योदय की रही है। इसी भावना के साथ गांवों और कस्बों तक विकास योजनाएं पहुंच रही है। आज जयपुर के दादिया में आयोजित सेवा संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने में जन प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। श्री नबीन ने कहा कि जनता के सुख दुख में साथ रहने में ही जन प्रतिनिधियों की सार्थकता है।
2: हम सभी जनप्रतिनिधि जो यहाँ खड़े बैठे हैं, हम सबको ये ध्यान में रखना है कि हमारे कार्य शैली से, हमारी कार्य पद्धति से और हमारे विचार से जनता का जुड़ाव हो। हम जनता की समस्याओं के साथ हर दिन हर पल खड़े नजर आए, तभी हमारी सार्थकता है। मैं आज उस भावना के साथ, उस सिद्धांत कि समाज में जो गरीब व्यक्ति है वो नारायण है और हमें उनकी पूजा करनी है, हम सामाजिक और मानव धर्म के सेवा के लिए आए हैं, इस बात के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि संकल्प पत्र के 78% काम राज्य सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में ही पूरे कर दिए हैं। युवा, महिला, गरीब और किसान के कल्याण की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ सहित अन्य विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नबीन ने बिड़ला सभागार में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। श्री नबीन ने युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत कल से प्रदेश में सेवा सेतु अभियान शिविर लगाए जाएंगे। यह अभियान 28 सितंबर तक चलेगा। गिरदावर, सर्किलों और ग्राम पंचायतों पर लगने वाले इन शिविरों के माध्यम से कृषि, ऊर्जा, महिला और बाल विकास तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता सहित 22 विभागों से जुड़ी सेवाएं दी जाएंगी। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी जिलों में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज से आंगन मिलन सेवा की शुरुआत हुई। इसके माध्यम से पोषण स्वास्थ्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके तहत आज आंगनबाड़ी केंद्रों पर कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। वहीं सेवा के रंग राष्ट्र के संग कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों पर आकर्षक और संदेश परक रंगोलियां बनाई जा रही हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुने गए हैं। जयपुर में सुनील कोठारी, जोधपुर में प्रसन्न चंद मेहता और कोटा में अनुसुईया गोस्वामी को मेयर निर्वाचित किया गया है। आज हुई मतगणना में तीनों ही नगर निगमों में भाजपा प्रत्याशियों को पार्टी के निर्वाचित पार्षदों की संख्या से ज्यादा वोट मिले। इन तीनों निगमों के महापौर चुनाव के नतीजे आने के साथ ही प्रदेश के कुल 10 नगर निगमों में से 9 पर भाजपा के मेयर बने हैं। केवल बीकानेर में ही कांग्रेस का महापौर बना है। अनुसुईया गोस्वामी कोटा नगर निगम की पहली महिला मेयर बनी है। वहीं सुकेत नगर पालिका में भाजपा के जितेंद्र चोपड़ा अध्यक्ष चुने गए। जयपुर मेयर सुनील कोठारी ने मीडिया से बातचीत में शहर को स्वच्छ और बेहतर बनाना अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि वे जयपुर के विकास के लिए पूरे प्रयास करेंगे।
3: मैं सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ जयपुर की जनता ने हमें अपना मताधिकार दिया है, विश्वास दिया है, हम सभी लोग 150 सांसद और मैं स्वयं और सभी 150 पार्षद हम इस जयपुर शहर की बेहतरी के लिए, विकास के लिए और गौरव के लिए और जो विश्वास उन्होंने दिया है उसको पूरा करने के लिए कार्य करेंगे।
0: जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में कल उप महापौर के चुनाव होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इस साल अप्रैल महीने में लाए गए नए नियमों को लागू करने के लिए प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। ये समिति जिला स्तर तक इन नियमों की पालना की निगरानी करेगी। आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल के अतिरिक्त मुख्य अभियंता भुवनेश माथुर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए नियमों में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। श्री माथुर ने बताया कि राज्य में हर दिन करीब 900 टन ठोस कचरा निकलता है। इसमें से लगभग 500 टन कचरा लैंडफिल साइट पर पहुंचता है। इससे कई तरह का प्रदूषण फैलने की आशंका रहती है। उन्होंने बताया कि नए नियमों के अनुसार गीले, सूखे कचरे और अन्य अपशिष्ट को अलग अलग करना अनिवार्य होगा।
4: एग्रीगेशन को तो खैर बहुत फोकस किया गया है। जैसे पहले खाली गीले और सूखे में होता था, अब चार तरीके से उसके अंदर होगा। और जो एक आम जन की शिकायत थी कि हम कचरे को सेग्रीगेट भी कर देते हैं पर ट्रांसपोर्ट के टाइम पे वो मिक्स कर दिया जाता है, उसको एड्रेस करने के लिए इसके अंदर प्रावधान है कि पूरा का पूरे की एक ट्रैकिंग सिस्टम बनेगी जो कि कचरा लेने से लेकर डिस्पोजल तक उसकी मॉनिटरिंग होगी। प्लस इसके अंदर और भी कुछ छोटी चीजें और भी हैं, जैसे आरडीएफ है उसको बढ़ावा देना, यानी कि हमारे इसका पूरा फोकस ही ये है, मॉनिटरिंग इसके मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना, इसको रिसाइकलिंग और रिसोर्स रिकवरी को प्रमोट करना और लैंडफिल को मिनिमम करना।
0: स्वच्छ भारत मिशन वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। आज ये अभियान शौचालय निर्माण से आगे बढ़कर कचरा प्रबंधन, व्यवहार परिवर्तन और जनभागीदारी से जुड़ा व्यापक स्वच्छता अभियान बन चुका है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: वर्ष 2017 में शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सामूहिक स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। श्रमदान, युवाओं की भागीदारी और सफाई मित्रों के कल्याण को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। वर्ष 2019 में ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। इसी साल सितंबर महीने तक देश में 5,59,000 से अधिक गाँव ODF प्लस हो चुके हैं। साथ 5,38,000 से ज्यादा गांवों में ठोस और 5,65,000 से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। वहीं शहरी क्षेत्रों के 95,478 वार्डों में घर घर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: अनंत चतुर्दशी पर्व पर आज गणपति विसर्जन के कार्यक्रम हो रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। श्रद्धालु तालाबों, नहरों और अन्य जलाशयों में गणेश प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन कर रहे हैं। इसके साथ ही 10 दिवसीय गणेशोत्सव का धूमधाम से समापन हो रहा है। समूचे माहौल में गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बांसवाड़ा के डायलाब तालाब पर भक्तों की भीड़ उमड़ी और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। डूंगरपुर की गेप सागर की पाल पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। उधर सवाई माधोपुर में भी अनंत चतुर्दशी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
6: इस शोभा यात्रा में अखाड़ों के करतबबाज, विभिन्न झांकियां, डीजे, ढोल, भजन मंडलियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिसे देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा है। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शहर भर में विभिन्न संगठनों की ओर से तोरण द्वार बनाए गए हैं और पुष्प वर्षा की जा रही है। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जय घोष के साथ लोगों में भारी उत्साह और उल्लास का माहौल बना हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई यह शोभा यात्रा देर शाम कालीसिल नदी पहुंचेगी, जहां विघ्न विनायक को विदा किया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक साधारण सभा की बैठक आज आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए बैंक अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जोशी ने कहा कि आरबीआई द्वारा बैंक पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाने के बाद बैंक लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने वर्तमान समय के प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिवेश को देखते हुए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का संकल्प सभी के योगदान और भागीदारी से ही साकार हो सकता है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विकास योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अहम बताया। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर निर्वाचित हुए। और अनंत चतुर्दशी पर्व पर प्रदेश भर में शोभा यात्राएं और गणपति विसर्जन के कार्यक्रम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बांकी बिहारी शर्मा ने तैयार किया है। जिले में पिछले दिनों नगरीय निकाय चुनाव, धार्मिक आयोजन और स्वास्थ्य तथा पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियां हुई। जिले के 6 नगरीय निकायों करौली, हिंडौन, मंडरायल, टोड़ा भीम, सपोटरा और सूरौठ में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। चुनाव परिणामों में हिंडौन, सपोटरा और सूरौठ में भाजपा के प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। करौली और मंडरायल में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि टोड़ा भीम नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। करौली नगर परिषद के सभापति पद के चुनाव में कांग्रेस के सुनील सैनी ने भाजपा के वीरेंद्र शर्मा को 5 मतों से हराया। सुनील सैनी को 30 और वीरेंद्र शर्मा को 25 वोट मिले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। करौली के मदन मोहन जी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हल्की बूंदाबांदी के बीच भी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और अन्य कार्यक्रम हुए। गणेश चतुर्थी का पर्व भी जिला मुख्यालय पर धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। करौली शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश गेट और हिंडौन दरवाजा सहित प्रमुख स्थानों पर सजावट की गई और झांकियां लगाई गई। शाम के समय इन स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। जिले में आज अनंत चतुर्दशी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ लोग विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। इसके साथ ही जिले में 10 दिन से चल रहा गणेशोत्सव आज संपन्न हो गया। लोग गाजे बाजे के साथ गणपति प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गई हैं। शोभा यात्राओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कार्यशालाओं और विभिन्न संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। मशीनरी और औजारों की पूजा कर कार्यक्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की गई। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम में शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और जिम्मेदारी के महत्व पर चर्चा की गई। हिंडौन ब्लॉक के बाजना कला गांव की शीला देवी ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय जानकारी देने का काम कर रही हैं। राजीविका से जुड़ी शीला देवी वित्तीय साक्षरता सीआरपी के रूप में महिलाओं और परिवारों को बचत बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बीमा और सरकारी वित्तीय योजनाओं की जानकारी देती हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद प्रशिक्षण लेकर उन्होंने गांव-गांव में वित्तीय जागरूकता पहुंचाने का काम शुरू किया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाई गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत वजीरपुर गेट स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद मीना ने बालिकाओं को दवा खिलाकर की। अभियान के लिए विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और चिकित्सा संस्थानों के बीच समन्वय किया गया। जिले में 10 सितंबर से मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह शुरू हुआ। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस माह के दौरान जागरूकता सत्र, संगोष्ठी, रैली, पोस्टर प्रतियोगिता और नारा लेखन जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले में 17 सितंबर से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों में ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, युवा समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी की जा रही है। अभियान के तहत रक्तदान, मेरे सपनों का भारत, चित्रकला और सेवा की कहानी सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। हिंडौन सिटी के KIHC निजी माल टर्मिनल को गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल में बदला जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी हुई है। इस जिले के व्यापारियों और उद्योगों को रेल के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों तक माल भेजने की सुविधा मिलेगी। कुंदलक और मॉडलगढ़ के बाद ये कोटा रेल मंडल का तीसरा गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल होगा। विश्व ओजोन दिवस पर करौली में जागरूकता रैली और जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। ज्योतिबा फुले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर ओजोन परत के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण का संदेश दिया। इस अवसर पर जागरूकता कार्यशाला भी आयोजित हुई। करौली जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
8: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो विकसित भारत रो संकल्प सगणा रा योगदान और भागीदारी उई सांचो वे सके है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन विकास री योजनावां रो फायदो हर एक जना ताई पुगावन माए जनता रा नुमाइंदा रो खास काम बतायो। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम माए भारतीय जनता पार्टी रा महापौर चुनी चिया और अनंत चौदस रे मौके राज्य माए शोभा यात्रावां निकाली ची और गणपति विसर्जन रा कार्यक्रम राखी चिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि विकसित भारत रो संकल्प सगणा रा योगदान और भागीदारी उई सांचो वे सके है। वह आज सेवा संकल्प अभियान रा तहत उत्तर प्रदेश रा वाराणसी उं गुजरात रा बड़नगर जा रहा सेवा यात्रियां सागे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बातचीत कर रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि खुद रे पाण उबो भारत बनावण रा गेला माए कई चुनौतियां हैं जाऊं पार पावन सारू रोजिना नुवी ऊर्जा और सेवा भाव सागे काम करनू फैला।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
8: प्रधानमंत्री आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती रे मौके वहां का न्यू बताई गया सेवा संतुलन संयम और समन्वय समेत सात सूत्रों रो जिक्र की नो वह आ सूत्रों ने सेवा यात्रा री आत्मा बताया। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य नितिन नबीन कहो है कि हमारी पार्टी अंत्योदय री भावना सागे गांवां और कस्बां ताई विकास री योजनावां पूगा रही है। वे आज जयपुर के न दादिया गांव माए राखी जी सेवा संकल्प सभा माए बोल रहा है। श्री नबीन कहो कि विकास से जुड़ी योजनावां रो फायदो हर एक जना ताई पूगावण माए जनता रा नुमाइंदा रो खास काम है।
2: हम सभी जनप्रतिनिधि जो यहाँ खड़े बैठे हैं, हम सबको ये ध्यान में रखना है कि हमारे कार्य शैली से, हमारी कार्य पद्धति से और हमारे विचार से जनता का जुड़ाव हो। हम जनता की समस्याओं के साथ हर दिन हर पल खड़े नजर आए, तभी हमारी सार्थकता है। मैं आज उस भावना के साथ, उस सिद्धांत कि समाज में जो गरीब व्यक्ति है वो नारायण है और हमें उनकी पूजा करनी है, हम सामाजिक और मानव धर्म के सेवा के लिए आए हैं, इस बात के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है।
8: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि विधानसभा चुनाव के दौरान जारी करी जिया संकल्प पत्र रा 78% काम राज्य की मौजूदा सरकार 2.5 साल रा कामकाज में ही पूरा करती ना है। वह कहो कि नौजवाना, महिलावां, गरीबां और किसानां रा भला सारू तेजी काम करियो चाह रियो है। ये मौके केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ समेत कई विधायक और जनता रा नुमाइंदा मौजूद हा। इन कार्यक्रम पाछे भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर रा बिड़ला सभागार माए नौजवाना सागे बातचीत कीनी। इन दौरान वे कहो कि जीवन माए सफलता रो कोई शॉर्टकट नहीं वे है। प्रदेश में विकसित भारत जन सेवा अभियान रा तहत काल 28 सितंबर ताई सेवा सेतु अभियान शिविर लगाया जावेला। सगला जिला रा गिरदावर सर्किलां और ग्राम पंचायतां माए लागण वाला आ शिविरां रे जरिए खेतीबाड़ी, बिजली, महिला और बाल विकास और सामाजिक न्याय और अधिकारिता समेत 22 महकमों जुड़ी सेवावां दी जावेला। ए बीचे प्रदेश रा सगला आंगनबाड़ी केंद्रा मत है आज आंगन मिलन सेवा शुरू हुई। इन जरिए पोषण और स्वास्थ्य जुड़ी योजनावां री जानकारी जनता ताई पुगाई जावेला। इन तहत आज आंगनबाड़ी केंद्रा मत है न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी जा। इस आगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियां रो मान करी जियो। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी रा महापौर चुनी चिया है। जयपुर में सुनील कोठारी, जोधपुर में प्रसन्न चंद मेहता और कोटा में अनुसुईया गोस्वामी मेयर चुनी चिया है। आ तीन ही नगर निगम में भाजपा रा उम्मीदवार ने पार्टी रा चुनी जिया पार्षदां री तादाद 32 वोट मिलिया। ए तीन ही नतीजा आया पाछे अब प्रदेश रा कुल 10 नगर निगम मायू 9 माय भाजपा रा, जदके केवल बीकानेर नगर निगम माय कांग्रेस रा महापौर चुनी चिया है। अनुसुईया गोस्वामी कोटा नगर निगम री पहली महिला मेयर बनी है। जयपुर रा मेयर सुनील कोठारी खबर नवीसा सागे बातचीत रे दौरान शहर ने साफ और बेहतर बनावण माथे खास ध्यान देवण री बात कही।
3: मैं सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ जयपुर की जनता ने हमें अपना मताधिकार दिया है, विश्वास दिया है, हम सभी लोग और मैं स्वयं और सभी 150 पार्षद हम इस जयपुर शहर की बेहतरी के लिए, विकास के लिए और गौरव के लिए और जो विश्वास उन्होंने दिया है उसको पूरा करने के लिए कार्य करेंगे।
8: सुकेत नगर पालिका में भाजपा रा जितेंद्र चौपड़ा अध्यक्ष चुनी चिया। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में काल उप महापौर ओहदा सारू चुनाव फैला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्र सरकार का न्यू ठोस कचरा रा प्रबंधन सारू ई साल अप्रैल महीना माए लाइचिया नुआ नियमा न लागू करण सारू प्रदेश माए तेज यूं काम करियो जा रियो है। इंसारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए समिति बनाई ची है। राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल रा अतिरिक्त मुख्य अभियंता भुवनेश माथुर आज जयपुर माए खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि राज्य माए रोजिना करीब 900 टन ठोस कचरो निकले है, जिनमायू करीब 500 टन कचरो लैंडफिल साइट माथे पुगे है। वे बतायो कि नुआ नियमा रा मुजब गीला, सूखा और दूजा कचरा न न्यारो करनो जरूरी वेला।
4: एग्रीगेशन को तो खैर बहुत फोकस किया गया है, जैसे पहले खाली गीला और सूखे में होता था, अब चार तरीके से उसके अंदर होगा और जो एक आम जन की शिकायत थी कि हम कचरे को सेग्रीगेट भी कर देते हैं पर ट्रांसपोर्ट के टाइम पे वो मिक्स कर दिया जाता है, उसको एड्रेस करने के लिए इसके अंदर प्रावधान है कि पूरा का पूरे की एक ट्रैकिंग जो कि कचरा लेने से लेकर डिस्पोजल तक उसकी मॉनिटरिंग होगी। प्लस इसके अंदर और भी कुछ छोटी चीजें और भी हैं, जैसे आरडीएफ है उसको बढ़ावा देना, यानी कि हमारे इसका पूरा फोकस ही ये है मॉनिटरिंग इसके मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना, इसको रिसाइकलिंग और रिसोर्स रिकवरी को प्रमोट करना और लैंडफिल को मिनिमम करना।
8: स्वच्छ भारत मिशन साल 2014 में चलाई चियो हो, ओ मिशन आज शौचालय बनावण आगे निकलर कचरा प्रबंधन व्यवहार में बदलाव और जनतारी भागीदारी जुड़ियो मोटो सफाई अभियान बन गयो है। पेश है एक रपट।
5: वर्ष 2017 में शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सामूहिक स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। श्रमदान, युवाओं की भागीदारी और सफाई मित्रों के कल्याण को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। वर्ष 2019 में ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। इसी साल सितंबर महीने तक देश में 5,59,000 से अधिक गाँव ODF प्लस हो चुके हैं। साथ ही 5,38,000 से ज्यादा गांवों में ठोस और 5,65,000 से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। वहीं शहरी क्षेत्रों के 95,478 वार्डो में घर घर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
8: आज अनंत चौदस रे मौके गणपति विसर्जन रा कार्यक्रम रखा जा रहा है और न्यारी न्यारी थोड़ा शोभा यात्रावां निकाली जा रही है। जात्रु तलावां, नहरां और पानी रा दूजा स्रोतां माए गणेश जी री मूर्तियां विधि विधान बोलाई। इस आगे 10 दिन रो गणेशोत्सव धूमधाम पूरो फेरियो है। बांसवाड़ा रा डायलाब तलाव माथे मोटी तादाद माए जात्रुआं री मौजूदगी माए भजन कीर्तन रा आयोजन राखी जिया। डूंगरपुर माए गेप सागर री पाल माथे राखी जिया कार्यक्रम माए मोकला जात्रु पूग्या। सवाई माधोपुर माए अनंत चौदस पारंपरिक श्रद्धा भाव सागे मनाई जा रही है। माना खबर नवीस बतायो के रामेश्वर धाम रात्रिवेणी संगम मथ जात्रुआ रो तांतो लग्योड़ो है। वठे निकाली जा रही शोभा यात्रावां माए मोटी तादाद माए जात्रु मौजूद रहा।
6: इस शोभा यात्रा में अखाड़ों के करतबबाज, विभिन्न झांकियां, डीजे, ढोल, भजन मंडलियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसे देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा है। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शहर भर में विभिन्न संगठनों की ओर से तोरण द्वार बनाए गए हैं और पुष्प वर्षा की जा रही है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयघोष के साथ लोगों में भारी उत्साह और उल्लास का माहौल बना हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई यह शोभा यात्रा देर शाम कालीसिल नदी पहुंचेगी, जहां विघ्न विनायक को विदा किया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
8: भीलवाड़ा जिला रा गावाई हलका माए गणेश चौथ हो शुरू हो गरबा महोत्सव आज अनंत चौदस रे मौके पूरो फेरियो है। जैसलमेर माए हिंगलाज महोत्सव मनायो जा रियो है। हिंगलाज माता री पूजा ने समर्पित ओ महोत्सव काल शोभा यात्रा सागे शुरू हो। महोत्सव रे दौरान न्यारा न्यारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलना नी होड़ा रखी जा रही है। अरब मौसम। प्रदेश में चौमासा री बिरखा लगभग बंद वेवण सा गई, गर्मी रो असर बतक्यो है। बाड़मेर और जैसलमेर में दिन रे बगत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। जोधपुर, बीकानेर, चूरू और नागौर में पारो 40 डिग्री सेल्सियस ऊंचो दर्ज करियो जा रियो है। कई ठोणा रात री बगत ही तापमान में बढ़ोतरी परेशानी वेवण लगी है। मौसम विभाग रे मुजब अवतार 2-3 दिन गर्मी रो असर रेवण रा आसार है। 27 सितंबर सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा और भरतपुर समेत राज्य रा उगनी हल्का माए कठे कठे आंधी बारिश री संभावना है। जापान माए चाल रहा एशियाई खेलारी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम होड़ माए आज भारत सोना रो तमगो हासिल कीनो। कमलजीत और सुरुचि इंदर सिंह री ई उपलब्धि सा गई भारत सोनारा 2, चांदीरा 8 और कांसारा 9 तमगा सा गए कुल 19 तमगा जीत लीना है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े सोनारो तमगो जीतण माथे एयर पिस्टल मिश्रित टीम रा खिलाड़िया ने बधाई दीनी है। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो विकसित भारत रो संकल्प सगणा रा योगदान और भागीदारी साँचो वह सके है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन विकास री योजना वारो फायदो हर एक जना ताई पोगावन माए जनता रा नुमाइंदा रो खास काम बतायो। जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम माए भारतीय जनता पार्टी रा महापौर चुनीचिया और अनंत चौदस रे मौके राज्य माए शोभा यात्रावा निकाली ची और गणपति विसर्जन रा कार्यक्रम राखी चिया। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
9: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनानिया से किसान भैया ने आप रे मांगीलाल भैरा घना है तो कोडू राम राम। किसान भैया मैं हाजिर हूँ आप रो पसंदीदा कार्यक्रम खेतीबाड़ी लेप रो। और आज आप रे ये कार्यक्रम रे मायने आप जिया जानो ही हो कि कार्यक्रम रे मायने कहीं कहीं है जी को पिटर और मायने रिया करे किसानों बातचीत भी है तो लोकगीत लोक भजन भी है सागे सागे छोटा मोटा काम रा जिगा एडवर्टाइज है विज्ञापन है वे भी है। तो ए सगली बात चिता रे पहली जे आप बात करा तो हैंगो पहली चौपाल मत बैठता था का आप बात करिया करा और रामाशामा करिया करा। तो आज बात जी की करा विंशु पहली आपने फिर एक बार रामाशामा करूँ क्योंकि देखो आज बहुत खास दिन है अनंत चतुर्दशी को और अनंत चतुर्दशी का आप देखा हाँ के शहरों लेपरार ग्रामीण परिवेश तई ज़्यादा ग्रामीण परिवेश मायन रिया करे भाई लोग रे अनंतरा उद्यापन उजीवना रिया करे। और बे भाई लोग है जी को देखो के कहानी कथा सुनपरा और सागे सागे है जी को जागरण सत्संग कराबरा और पचे जी को प्रसादी रो कार्यक्रम भी रिया करे। तो आप सगड़ा भाई लोग ने जिका भी भगवान विष्णु रा भगत है जी का भी सब जना ने है जी को अनंत चतुर्दशी री घनी घनी शुभकामनावां घनी घनी बधाइयां। और जिका भाई लोग करी है उद्यापन उजीवनो बेने तो मोकली मोकली बधाई। और बहुत ही बढ़िया देखो के इरे सागे आप आगे बात करा तो आजरी जी की बात है बा आ ध्यान में आवे मारे कि भाई आप पशु रा का हाँ धंधीनो आपने सगड़ा रे घर रे मायने है पशुआ रे मायने आप जी का दुधारू पशु रखा दुधारू पशुआ रे मायने एक तो आप देखा हाँ के कृत्रिम गर्भाधान है जी को चलिया करे आ एक देखो नई वैज्ञानिक तकनीक है पशुपालन ने बहुत बढ़िया बनाने खातर आ जिकी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है इरे बारे में आप थोड़ी सी बात कर ला। किसान भैया पशुपालन आपने ग्रामीण जीवन रे मायने और कृषि अर्थव्यवस्था रो एक महत्वपूर्ण आधार है। आज री टेम रे मायने पशुआरी छोकी नस्ल बैंको बेहतर स्वास्थ्य और ज़्यादा बैंकों उत्पादन रे वास्ते वैज्ञानिक पशुपालन तकनीक ने अपनावनो अपने वास्ते घणो आवश्यक वेजावे। इर मायने कृत्रिम गर्भाधान एक एडी उपयोगी तकनीक है जिकासू पशुआ रे मायने उन्नत नस्ल रो विकास हुए तो बैंके गुणा ने आगे बढ़ाने रे मायने सहायता भी मिले। अब बात करा कृत्रिम गर्भाधान है जी को काई है कि करूँ या करे इरा काई फायदा है। कृत्रिम गर्भाधान रे मायने अच्छा और स्वस्थ नर पशु सु प्राप्त वीर्य है जिका ने वैज्ञानिक विधि सु मादा पशु रे प्रजनन मार्ग मायने उचित समय रे मायने पहुँचायो जावे इनसु प्राकृतिक रूप नर और मादा पशु रो मिलन है जी को आवश्यक कोनी। इरा प्रमुख लाभ है वे कहीं कहीं है आप प्रमुख लाभ जी का है वे ध्यान करना उन्नत नस्ल को विकास। अब जी की आप बात करी कि भाई इनसु नस्ल है जी की एकदम उन्नत नस्ल के ये रिया करे चोखो और अनुवंशिक गुणों वाला सांड है बैंको बहुत बढ़िया है जी को स्पर्म लेप रो और इनसु बेहतर नस्ल है जी की संतति प्राप्त करने मायने मदद मिले।

0: पशुपाल कार्य वास्ते विधि है जी की बहुत ही सुविधाजनक विधि है। हर पशुपालक ने उन्नत नस्ल का सांड पालन री आवश्यकता को नहीं रहे। रोगा रे प्रसार री जी की जोखिम है बा इंक मायने कम रिया करे। प्राकृतिक संसर्ग री तुलना रे मायने उचित स्वास्थ्य जांच और प्रमाणित वीर्य रे उपयोग से कुछ संक्रामक प्रजनन रोग है जिका रो प्रचार प्रसार एकदम बिल्कुल ही कम हो जावे। बीरी जोखिम है जी को एकदम कम हो जावे। बेहतर उत्पादन री संभावना रिया कर इनके मायने देखो सही नस्ल उचित पोषण और अच्छो प्रबंधन रे साथ कृत्रिम गर्भाधान सु दूध उत्पादन तथा पशुवारी उपयोगी आनुवंशिक क्षमता ने बेहतर करण खातर बहुत बड़ी सहायता मिले। समय माते प्रजनन वेजावे। अब देखो कि टेम माते इरू प्रजनन वेजावे आप देखा तो आपने जी का दूधारू पशु हीटरे मायने आवा बी टाइम आप है जी को कहीं है के पाडा कने या सांडे कने ले जा सका नहीं ले जा सका। लेकिन डॉक्टर साहब ने आप है जी को कह माया मैं पशु पालन जुड़ोड़ा जी का डॉक्टर साहब कंपाउंड साहब है बेन आप फोन रे माते ही बुलाई सका और घरे आर ई तकनीकों अपने है जी को प्रजनन वालो काम कर सके। समय माते प्रजनन अब पशु है जी को हीटरे मायने सही समय री पहचान कर प्रो और कृत्रिम गर्भाधान करणु गर्भधारण री संभावना है जी को बहुत अच्छी हो जावे बढ़ जावे। सबू जरूरी इंग मायने है कि सही समय कृत्रिम गर्भाधान री सफलता रे वास्ते पशु रे हीट में आउन री सही पहचान और सही समय माते गर्भाधान बहुत महत्वपूर्ण है। पशु रे मायने बेचैनी बार बार रंभावनो दूसरा पशु रे मत चढ़नो या दूसरे पशु ने आप रे ऊपर चढ़न देवनो जन्नांगा ने साप चिपचिपो श्राव ज्ञान का लक्षण दिखाई देवे तो आपा समझ सका के पशु हीट रे मायने हालांकि हर पशु रे मायने लक्षण समान को नहीं हुआ करें। इन वास्ते संदेह होने रे बाद मायने आपा प्रशिक्षित जी को पशु चिकित्सक या कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन कोई है बीरी सलाह लेला तो बात ज्यादा सही रहे। पशुपालक भाई भी इनके मायने थोड़ी घनी बातों रो ध्यान रखे वे कई बात चिता है वे यह है कि कृत्रिम गर्भाधान हमेशा प्रशिक्षित व्यक्ति से ही करवाना चाहिए। स्वस्थ पशु गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित वीर्य स्वच्छ उपकरण और सही समय यह सगली बातों रो विशेष महत्व है। गर्भाधान रे बाद मायने पशु ने संतुलित आहार देवनो पर्याप्त पानी पावनो और खनिज मिश्रण और उचित देखभाल करनी घनी जरूरी है। कृत्रिम गर्भाधान केवल गर्भधारण करण रो एक तकनीकी कोनी बल्कि आने वाली पीढ़ी जी की पशुवारी है बीरी गुणवत्ता सुधारण रे वास्ते एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। अब इनके मायने आप कई संदेश देवा सकला पशुपालका ने कि स्वस्थ पशु उन्नत नस्ल बेहतर पशुपालन समृद्ध पशुपालक ई वैज्ञानिक तकनीकों ऐ सगली चीजा हुए पशु स्वस्थ रहे उन्नत नस्ल ने बढ़ावा मिले बेहतर पशुपालन हुए और पशुपालक जी को खुद है वो समृद्ध हुए। तो किसान भैया देखो कि ऐ बातें चीता ही आजरी जुजोड़ी आप पशुपालन करा अपने जी का दुधारू पशु रखा बेहू संबंधित बातें चीता ही और बातें सीता तो आप देखो कि ई प्रोग्राम रे मायने आप रो जी को तेवड़ेड़ो टाइम रो कार्यक्रम है आधा घंटे रो इनके मायने और भी बातें सीता करा यार और भी कई काम री बातें सीता सुना। लेकिन हैंगू पहली तो अब देखा हाँ के सोम भैया उठी ने बैठा बैठा है जी को मने इशारो करे है कि एक चौखी काम री बात हुई ज बताई दूँ तो बताओ देखा।
1: राम राम। आपने मंगलाल भाई और हैंक मुनिया भाई बहना ने कामरी बात आई है एक आज जड़ो की परवरी बात आप करी ही और मेरे साथ साथ एक निवेदन मैं करूं कि आज एक अनंत चौदस रे साथ साथ गणपति विसर्जन रो कार्यक्रम भी करी जी है तो बिन सारू निवेदन है कि बहुत ही अच्छी संस्कृति संस्कार आपने अठे राजस्थान रे नागौर जिले रे मायने पनप्रिय है। लेकिन फिर साथ साथ अपना अपनी प्रकृति रो भी ध्यान रखना है और अपना जगह जलाशय है जगह प्रशासन द्वारा निर्देशित है मारो ध्यान रखता था कहीं अपने जगह है भाई सेण है जगह बीरो विसर्जन करियो वेला और बीर साथ आगे भविष्य मायने में अपन आ चीजा रो ध्यान रखना है कि आप एडा कोई भी कार्यक्रम करना चाहे कुछ भी वो बिना मायने अपन अपनी प्रकृति ने सर्वोपरि राखकर सारा काम करना चाहिए। क्योंकि मंगलाल भाई

0: ने अपन ले जा ले जा गजानन जी रो माता जी रो विसर्जन करानी तो ध्यान राखनो के काल ने जी को वो जल स्रोत अपन देखो पाछा पशु पक्षियां वाते अपन वाते प्यू ने पानी काम में आवे तो ज्यादातर कही है आप जी बात बताई ना केमिकल नु परे जान छोटी सी गजानन जी री मूर्ति जब माटी री बनाई लेवा और बीरी पूजा करा बा जी को विसर्जन भी चोक्यू जा और पाछी गुड़ जावे पानी
1: है ना बिल्कुल
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: तो देखो कि बहुत ही बढ़िया बातचीत अपा कर रहे हार अबे सोम भैया यहाँ है कि आज जाऊन हुयो गांव खरी कर्म सोता
1: अच्छा
0: बटे है जी का मने किसान मिलिया राजू राम जी बैंकू मैं की हतावड़ी कर लाइयों बा भयां ते करा फूकती
1: हाँ बिल्कुल ले रहा हो सा
3: राम राम सा
0: काई सा शुभ नाम
3: राजू राम जी।
0: तो राजू राम जी देखो आज आप रेट खेत में आया हाँ और रेडियो वास्ते की बातचीत पर आप है जी को कहीं काम धंधा खेती बाड़ी वाले करो
3: खेती बाड़ी रही रहा।
0: कितना बीघा खेत बहु
3: पच्ची एक बीघा।
0: तो हम काले ये खरीफ वाली फसल रमायन आपके पास खेत रमायन कहीं कहीं बयोड़ा
3: बाउड़ा तो बाजरी मूंग मोट तिल
0: तो केड़ो कहीं धान
3: के मोड़ो है
0: मोड़ो कहीं कारण रियो राजू जी
3: कहीं बरसात कम है
0: अच्छा
3: फिर वजह उकड़ गया
0: बरसात मतलब देखे जाए तो जी टाइम भांगा करिया बीर बचे तो चौकी एक बरसात हुई
3: को
0: बाकी तो हुई को नहीं जाना बरसात रे कारण है जी को जमानो लगभग मोड़ो रह गयो। अच्छा आज तो बात हुई बरसात माते थे क्या हो भाई बरसात टाइम माते आई को नहीं या कमी रहेगी बरसात री जना है जी को जमानो मोड़ रही हो बीरे अलावा आप जी हाँ जी टाइम खेत बहो ना तो बीज बचे किसो घर रोज काम में लियो या बाजार में लिया
3: बीज घर रोज काम लियो उपचारित कर बाकी बाजार में लाया
0: बाजारों भी लाया तो बीज मेहनत की मोली वाड़ो कोनी हो
3: नहीं मोली वाड़ो की हो
0: कोनी हो
3: बीज तो ठीक है गड़ाई बाकी गड़ाई यहां पर वर्षा जी कमी उकड़ गया बढ़ गया
0: बरसात री कमी री कुल मिलार तो आप जी को बीज है ना घरे रखो और घरो बीज जी को काम में लेव पाछो सालो साल तो बो राजू जी बीज है जी को की कर काई रखो
3: बो जान पुरानी विधि है बोरा का मटकी गड़ो बीर मई रखा ऊपर बानी देवा
0: अच्छा
3: बी हिसाब रखा
0: बीरू वो खराब को नहीं हुए
3: खराब हुए कौन
0: खराब को नहीं हुए और पाछो बहु जना बीरी पैदावार माते कोई फर्क कौन पड़े
3: कोई फर्क नहीं पड़े
0: चलो बहुत ही बढ़िया
3: और फूले को नहीं गले को नहीं फिर क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आवे
0: बहुत ही बढ़िया सा अच्छा खेतरे में आप खाद आदि डालोगे
3: खाद देसी गला पशु पशु
0: नहीं देसी की बात करा सा ज्यादातर देखो अपन आने तो कहीं पीवत जमी है कोनी
3: बना का
0: पीवत जमी है कोनी जना आप ज्यादातर कहीं खाद देसी ना को तो देसी खाद रे मायने जिया धन देनो घरे रखो गाय भैंसारा पोटा गोबर हुए वो खाद है जी को आप खेत रे मायने खिंडाए दो तो वो की टाइम देओ
3: वो जान खेत बावा जी 15-20 दिन पहले लाग दा
0: 15-20 दिन पहली अच्छा वो खाद है जी को खेत रे मायने किया रे ताकतवर रहे
3: खाद होवे जे ताकतवर रहे
0: तो राजू जी थाने काई लागे जिया खेत बयोडो है खेत रे मायने जट कटी खाद ना क्योडो है खाद ना क्योड़ो है जटेर जट कटी खाद नी ना क्योड़ो है बट पैदावार में फर्क दिखे
3: घनो फर्क दिखे बट
0: अच्छा
3: बट छोटा रे जी पलिया कम लागी और बाकी जट खाद ना कोड़ी जी बदी ज्यादा पलिया ज्यादा लागी
0: बिल्कुल सही बात है। अच्छा खादरी जी की विधि है ना एक विधि तो बहुत ही बढ़िया है जान आप खाद बनावा कंपोस्ट है ना कंपोस्ट खाद बनाउन मायने तो कहीं केंचुआ और भी मायने जी को नागपुर आर भी खाद बनावे ये कह जी को कहीं है आप जी हाँ हुए है गोबर पोटा तो ढिगला कर दिया बे ढिगला ने हजू ही खिंडाई दिया या पच कोई खाडो खोद पर और भी खाद ने थोड़ी घनी है जी को गड़ा प्री सड़ा प्री या तैयार करो कहीं करो की करो
3: नहीं बैठो की कौन करा ही दी ना कार बाकी बे सुविधा है कौन है वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली
0: नहीं वर्मी कंपोस्ट वाली सुविधा तो कौन है लेकिन फिर भी कहीं वे जी हाँ पोटा है मान लो पोटा तो आप उकुड़ी मत नाक बोना बे डगड़ा बन जाए और पे खेतरे मायने भी है जी को मान लो ये तो सही तरीके मिले को नहीं ये आप खाडो खोद भरो और मान लो

0: तो 5-7 फुट को जिया टांको हुए नहीं, बेला कोई खाडो खोद पर और भी मायने पानी गालबो रार पत्तियार कोई डांगलियार डूंगलियार की हुए जी की हगली भी मायने गालबो रहा, तो वो कहीं है कि यहाँ गल सड़ पर और एकदम ताजु बह जाओ
1: बेड़ो तो की को करा नहीं है रवा खा तो इधर पानी गाल दा थोड़े बड़ो और बाकी बेड़ो तो की नहीं करा
0: बेड़ो को नहीं करो
1: बेड़ो की
0: को। बहुत बढ़िया, देखो के आप वो ओ खाद नाको तो आपने हर साल नाको हो जन लागे भाई और ठीक काम करे भी हिसाब हुआ इतनी विधियों खाद बनो को नहीं
1: हाँ
0: और खेत बहु जना ट्रैक्टर बचे है जी को कहीं घर रोई है या किराए लार बहु
1: नहीं बस किराए में बहु
0: किराए लार बहु। अब अबार तो लगभग देखो के मूंग मोटी बहुड़ा है
1: हाँ मूंग ही बहुड़ा हाँ मोटी बहुड़ा हाँ
0: आई क्या सगला
1: मोट तो पहले ही उकड़ गया यार मूंग पाड़ लिया
0: मूंग पाड़ लिया
1: हाँ
0: मूंग पाड़ लिया जना पछे निकालो कहूँ अबे जी को
1: थ्रेशर निकल
0: थ्रेशर निकली
1: हाँ
0: सब मशीनों काम हुई
1: सब मशीन हुआ
0: हाँ तू कीन कौन है
1: हाँ तो की कौन बस
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो
1: तोड़ना पाड़ना ही है
0: निकाल लिया कहीं
1: हाँ निकाल लिया
0: कितना हुआ
1: बिक गया 40 खान किला
0: अच्छा बिक गया 40 खान किलो कुल मिलार कितना हुआ
1: कुल मिला गया 4-5 कुंटल
0: 5 कुंटल हुआ। तो 5 कुंटल राजू जी जी आपरे मूंग हुई यार और पछे जिमनाली बाजरी कती हुई
1: जिमनाली बाज है तोड़ी वो नहीं काटी वो नहीं
0: अच्छा सीटिया हाल थोड़ी को नहीं तो कहीं लागे की कर कहीं कितनी हुई
1: बाजरी बल ठीक हो जी
0: अच्छा
1: 87 किला बिके जो जी
0: देसी बहु बाजरी
1: देश बाज देश
0: के शंकर बहु
1: नहीं शंकर कौन बहु शंकर हुए कौन है
0: शंकर में और देसी में कहीं फर्क है
1: भर गई कौन शंकर दाणो मोटो है देसी तो छोटो है और बाकी देसी हुए ज्यादा शंकर हुए कम
0: अच्छा
1: और देसी बरसात कम हुए तो ही भी हो जाए
0: और
1: शंकर बरसात कम हो जाए वे कौन
0: भाई आ बात हांगी मन फूट लागी देखो के देसी बाजरी है जी की कहीं है कि कम बरसात मायने हुए जावे लेकिन जट बरसात मान लो फूल हुए या पछे और कोई सिंचाई रा साधन हुए तो बट्टे तो आ शंकर बाजरो ज्यादा भाव यार कम किया हुए राजू जी हुए तो घनी है सीटो और लंबो आवे यार पछे बाजरी भयोड़ी रहे पूरी सीटा में
1: मेरी सिटी छोटी हुए पच्चे दाणो हुए मोटो जन वो उत्पादन बिगर कम हुए
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ शंकर बाजरी चौकी हुए तो 2 कुंटल हुई बिगेरी इम ज्यादा हुए बोले
0: अच्छा
1: पीहूत में और बाकी देशन हुए तो चौक जमन हुए जरा 4-5 कुंटल आसपास बिगम बैठ जाओ
0: अच्छा अच्छा बाजरी मूंग मोट तिल ए सगला ही मान लो घर बरतो थे घर में राखो बाकी पछे मंडी ले जार बेचो या अटे कोई भोपारी आवे
1: अटी भोपा जावे तो बेचदा मंडी भी ले जे वहां
0: मंडी भी ले जो
1: चोका भाव मिले तो बेचदा
0: चोका भाव बात तो भाई है ना चोका भाव मिले जना तो चोका भावा खातर काई पहली की ठा करो
1: हां पहली
0: तो भाई
1: बाजार
0: भाव
1: में
0: कहीं चले
1: बाजार में भाव रो पत्तो करता रे वहां भी है जाऊं बस बेच
0: और क्षेत्र चारू में रहे जी को देखो उजाड़ भी कासा रेवे
1: उजाड़
0: तो उजाड़ वास्ते राजू जी काई करो थे कोई करंट झटका तार लगो या बस और कोई पहाड़ बंदी करियोड़ी काई करो
1: नहीं आपा तो कहीं कौन लगा वहां करंट झटका अपन तो तार बंदी करोड़ी है और बाकी मार खेत है बीच है बाकी चाव फेर जहाँ हड़क लागूड़ी है बार भाड़ा करूड़ी है
0: नया पेड़ पौधा भी आप है जी कोई चौमासाल टेम मायने की खेतार मायने या ढाणी रे आसे पास लगो कोई
1: हाँ कोई ढाणी आसे पास लगा ना बाकी खेत में तो खेल ही हुए ना बिन हो ही कर दा कोई खेल हुए तो बिन सही कर दा छांग छुंगार
0: अच्छा
1: बांध बूंदार बाकी कोई कहीं नहीं लगा
0: खेत में खेल लिया कितनी के
1: खेत में खेल लिया 20 कांड हुए
0: राजू
1: 10 बीघा में 20 कांड
0: खेल लिया है जी को ए मत ही लगे या लगो बचे
1: मत ही लगे
0: मत ही लगे
1: या जड़ कोई जड़ हुआ फूट लाग गया हुआ का 20 घंटे जड़ लाग गया हुआ 20 घंटे तक तो दोरी लागे यार कोई जड़ फूट उड़ गया बाहो ही लाग गया
0: अच्छा पछे आप है जी को मेरी थोड़ी सार संभाल कर दो
1: साल संभाल कर दो बहुजी
0: 5-4 साल मोटी हो जावे
1: 5-4 साल पेड़ हुई है
0: पेड़ हो जाए तो आशा राजू जी आप जानकारी दी आपने घने मान धन्यवाद
1: धन्यवाद
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: तो देखो किसान भैया आप सुनियो बातचीत है जी को किसान बिरोड़ी गांव खारी क्रम श्रोता का राजू राम जी हूँ और अब देखो बाजार हमारी पानड़ी अपन के नायोड़ी एक बार आप बाजार भाव सुन ली रहो फिर पछे जी को आपने बढ़िया शोक एक भजन भी सुनावा एडी कोई बात कहो नहीं। आज नागौर मंडी मायने चमकी मूंग है जी का 8600 लेर ऊपर में 9400 रुपया तो मूंग जी का सिंपल है बे 7,800 लेर 8,500 ते लिया। मोटारी बोली 6,000 लेर 6,900 ते लागी। तिल काला 10,000 लेर 11,200 रुपया ते बिक्या। सफेद तिलारी बोली 10,500 लेर 11,700 रुपया ते लागी। ज्वार नागौर मंडी रमाइने 4,000 लेर 5,800 रुपया प्रति क्विंटल बिकी। ग्वार रा भाव 6,000 लेर 6,400 रुपया प्रति क्विंटल दिया। तारा मीरा री बोली 6,000 लेर 6,225 रुपया ते दी। और सरसों है जी की औसत जिगार माने 40% फैट है। बिरी बोली 7,900 रुपया तीन लगी। दाना मेथी 6,000 लेर 6,450 जीरो। नागौर मंडी में 17,500 ले प्रो 21,800 रुपया तीन बिके हो। सौंफ नीचे रमाइन 8,000 बिकी तो ऊपर में 13,000 बिकी। इसबगोल नीचे में 10,000 ऊपर में 14,200। चीना 5,500 रुपये लेर 5,750 रुपया तीन बिकिया। अशाली वो है जी को 5,900 रुपये लेर 6,150 रुपया तई। और सिंधी सू है जी को 6,000 लेर 8,100 रुपया तई। और अब लियो सुना ओम जी वैष्णव रो गयोड़ो महाराज प्रभु विष्णु जी अनंत चौदश रे माथे विशेष ओ लोक भजन।

0: और किसान भैया ई भजन रेशा गई जे देखा घड़ी का नहीं तो टेम हुए पूरो आपरा मांगीलाल भाई ने
1: और सागे आपरे सोम भाई ने
0: दिरो शीख करा
1: राम राम, राम सा।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं, वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए, क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ, अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं, वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है,
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
2: जी।
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
3: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया, उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
3: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था, वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
3: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
2: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
3: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
2: जी।
3: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
2: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य

0: अन्य ध्वनियाँ। इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
0: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
1: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में

एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: और आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम। शीर्षक है द रेस।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के सारे पशुओं की एक मजेदार दौड़ के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम, हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
1: अरे अरे बिच्छू, अरे
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
1: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
1: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों

0: काला, ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
1: बच्चे, तुम ठीक कहते हो। तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा।
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई।

भले लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल को एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी कव्वालियाँ। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जाने मन से मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और हेमलता की आवाज़ में ये कव्वाली।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को और आप सुन रहे हैं फिल्मी कव्वालियाँ। अगली कव्वाली आपके लिए है फिल्म बरसात की रात से, जिसमें आवाज़ें हैं हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और सैयद साबरी की।

बाजू मेरे आ।

अभी आपने सुना आशा भोंसले, सुधा बलबीर और बंदे हसन और साथियों की आवाज़ में इस कव्वाली को। फिल्म का नाम था बरसात की रात। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं गाने नए जमाने के। इस कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ गाने नए जमाने के एक प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने

0: संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
1: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया, जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
3: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्सपा को पहली अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफ्सपा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 असोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
5: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
0: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल

0: महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एक्सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम मैनेजर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
1: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। रात्रि के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम की पहली पेशकश तलत अजीज की आवाज में।

हरिहरन की आवाज़ में गाइस गज़ल के साथ हमारा सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल को एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं फरत नाज।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार।
2: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल जगत के जाने माने विश्लेषक श्री जी राजा रमन जी। नमस्कार राजा रमन जी।
4: शुक्रिया फरहत।
2: तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने इसरो को साइकिल पर रॉकेट ले जाने के दौर से देखा है, आज हम चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
3: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं, और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है
2: जी।
3: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारे सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था
2: जी सर।
3: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से एक रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
2: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजा रमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा। तो ये बदलाव कैसे आया?
4: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया है। पहले नहीं था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं, और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
2: सर ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ, फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है, और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या गाँव के बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
4: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है। पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है, और युवाओं को ये समझ आया है कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
2: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं। आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
3: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल के अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा, वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है और वो अब कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से ही पता है क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट सिनकॉम 3 1963 में भेजा था उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके
5: जी।
3: और उसके बाद जो प्रगति हुई जो हमने देखा कि 1982 में इनसेट 1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। ये कैसे होता है तो इसके लिए जो दूरदर्शन की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ऑल इंडिया रेडियो की ट्रांसमिशन सिस्टम है उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है जो उपग्रह का उपयोग करके हम ये सब काम कर सकते हैं।
5: जी तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है क्योंकि खेल में भी एक सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी एक सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है। तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजा रमन जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा अनुशासन चाहिए?
4: बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में जैसे हम मुझे लगता है डॉक्टर कले और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं। वहां आप देखिए एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले। ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था। एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में 2 मेडल हासिल कर सकती है मनु बाकर की बात कर रहा हूं मैं। ये कोई सोच नहीं सकता था लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ। अब हमारी सोच शायद छोटी थी अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला है और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का एक मौका मिला है भारत को और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं खास करके हमारे टॉप एथलीट।
5: राजारमन जी पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे शायद लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं।
4: वो भी बढ़ रहे हैं क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है और कई ऐसे एथलीट हैं शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाती है और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है शी इज वेरी फेमस एथलीट। ऐसे बहुत सारे एथलीट है जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं। पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है। ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले 10-12 साल में और हमारे खिलाड़ी विकलांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
5: बिल्कुल राजा रमन जी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं।
6: श्रोताओं आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन श्रोताओं इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है। इसके लिए रॉकेट अंतरिक्ष यान जीवन रक्षक प्रणाली अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है। भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है। इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमेनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी। इसके बाद 2 और अनक्रूड मिशन की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है। श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का रास्ता भी खोलता है। अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी गई। उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है। देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
7: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास। और प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मिशन फेल हुए, जैसे चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग, तो उस रात इसरो में क्या माहौल था और फेल होना भी युवाओं के लिए क्या सबक है?
3: एक तो जब हम हाथ में काम लेते हैं तो पहले से पता होता है कि कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका अभ्यास करके इसमें क्या सुझाव करना पड़ेगा। तो यही सोच रख के हम काम करते हैं कि कुछ भी जो फेल हो जाए तो ठीक है, हम आगे जाके इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जब मिशन होता है, इतनी बड़ी टीम जब काम करती है, कभी कुछ गलत हो सकता है, और जो गलत हो जाए तो आगे जाके उसको ठीक करके हम फिर से दोबारा ऐसा ही प्रयत्न करेंगे। ये भावना मन में रख के ही हम आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
7: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियां क्या हैं?
3: पहले से ही हम देख रहे थे कि जब हमने काम हाथ में लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम करना है वो। और तभी से 40 साल हो गए, अभी सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती है। आज जो देखे तो मुझे लगता है कि 75% काम जो है वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है। और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है, वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नहीं तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काई रूट का जो विक्रम वन जो उन्होंने लॉन्च किया
5: जी।
3: बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी तरह से। उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था, तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
5: और अब राजारमन जी आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की। तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
4: इससे पहले मैं डॉक्टर काले ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से सीख लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेलें और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाएं, और इसरो ने वो कर दिखाया।
5: हाँ, और पुरानी कहावत भी है, हार में ही जीत है।
4: बिल्कुल है। और अगर हम फिट इंडिया की अभी बात करते हैं तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो। और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है। एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही और अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए
5: जी। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
4: वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए, जो छोटे शहर से आते हैं या गांव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है और वो कर दिखाते हैं। शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं, उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है। हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है कि वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गाँव को सुधारना चाहते हैं
5: जी। अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के दो युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
3: उसकी टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो
5: जी।
3: और जब उसको लॉन्च किया विक्रम वन को, सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था। जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है।
5: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें तो आप भारत को कहाँ देखना चाहेंगे?
3: चंद्रमा पे जाकर वहाँ से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी।
5: वापस आना और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना। राजारमन जी,
4: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं, और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें, उनमें से चैंपियन पैदा करें शिक्षक जो कोचेस हैं, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है।
5: तो राजारमन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, तो अगर ओलंपिक भारत में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा हो?
4: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है। हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो स्टेडियम बनाने का लेबर फोर्स हो, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं इसमें, और युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। खिलाड़ी के लिए तो है ही, लेकिन और भी युवा जुड़ सकते हैं खेल के माध्यम से और उनका भला हो जाएगा।
5: और अब वापस लौटते हैं और अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है अंतरिक्ष में आगे के लिए, प्रमोद जी क्या होना चाहिए?
3: जहाँ भी वो सीखते हैं ये बच्चे, उनको पहले से ही थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि छोटा रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सैटेलाइट किस तरीके से बना सकते हैं और उसमें जो टीम जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है। मैंने यहाँ पुणे में देखा था एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था स्वयं। और रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया पुणे में तो मैंने उनको मदद की थी और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी ये काम वो कर दिखा सकते हैं। वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रही थी क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स है, उनके 3-4 साल पूरे होने के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था। और इस तरीके से का काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए।
7: प्रमोद जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, इस किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुंचाया?
3: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स अमेरिका से, फ्रांस से आए थे। उसके बाद में जब हमने अपना खुद का ईंधन जो है वो तैयार किया, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार हुआ, तो वो प्रोपेलेंट जो है उसी के लेकर हम आगे जाकर काम कर सके। उसके बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में काम किया, उसके बाद में जाकर क्रायोजेनिक्स में भी काम किया। तो ये जो आत्मनिर्भर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिर्फ कोई इंटरनेट से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन ये आगे जाकर ये हमें खुद को करना पड़ता है और ये जो खुद को करना पड़ता है ये देखकर हम आगे चले गए हैं।
7: खुद को देखकर करना पड़ता है राजा रमन जी। तो अगर आप खेल की हम बात करें तो इसमें भी हम वही चीज अपनाना चाहेंगे कि सीमित संसाधन उस समय हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं, तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
4: बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी कुछ शूटर्स के साथ जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है। वो सूट पहले आप इंपोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आगे आए। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
7: तो एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए?
4: 1970 में कमलजीत संधु पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए। और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारे महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो एक कोशिश ये है, अगर आप खेलो इंडिया की बात करें उसके अंदर अस्मिता लीग करके एक शुरू हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये हमारे समझ में आया है कि महिला हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना है अस्मिता, वहां से खेलो इंडिया में चलते हैं, खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में आते हैं। बहुत सारे अभी रास्ते खुले हैं हमारे महिलाओं के लिए और एक इज्जत मिलने लगा है सोसाइटी में जब वो खेलते हैं और फिर भारत का नाम रोशन करते हैं। दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट मोर, पहले जैसा नहीं, लेकिन अच्छी बातें हो रही है भारत के अंदर और मुझे लगता है कि महिला ही हमें बहुत आगे और लेके जाएंगे।
7: अगर खेल की हम बात करते हैं तो उसमें डोपिंग और एज फ्रॉड जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, तो युवाओं का जो करियर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस चीज को कैसे रोका जाए?
4: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है, अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है। एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है
5: जी।
4: और इसमें चाहिए जो पेरेंट्स है, जो स्कूल के अध्यापक है, जो कोचेस है, इनको चाहिए अनुशासित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है
5: जी।
4: अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम।
5: राजा रमन जी, आपने अनुशासन की बात की तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद जरूरी है। तो अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने को मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
3: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे, उनसे मैंने एक देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट चेंज करते थे, ये हमें सीखना मिला उनके पास से। और एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे साथ में काम करने के लिए आगे 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई, बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज द ओनली एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशंस, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे। और आगे जाकर हम जब SLV का काम करना चालू कर दिया तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं, वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांतता पूर्वक, कितनी सभ्यता पूर्वक वो जो काम करते थे वो सीखने को मिला। तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर से नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये। और इसी लिए जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देता है
5: जी। टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजा रमन जी, हर चीज के लिए।
4: बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी आजकल टीम आ गया है। एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है। युवाओं को भी समझ आया है कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम। और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है। और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना भी आप अच्छा कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी हैं, उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाए और बेहतरी हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप बेहतर हो सकते हैं। ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगे रहे, परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाएं कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते।
5: और अगर बात अब 2047 की करते हैं तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए जी। प्रमोद जी सबसे पहले आप बताइए।
3: जब मैंने पहले पढ़ा था गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके
5: जी। राजरमन जी,
4: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा। और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
5: तो हमने जैसे जाना कि खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहां पर, और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
3: ये युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते है, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है इसकी थोड़ी तो उनको जो कल्पना हो, और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनके फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।
7: प्रमोद जी, देखा जाए तो आजकल के युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
3: हमने जब इनसेट वन लॉन्च किया था तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनसेट वन बी का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतनी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है, यही मैं तो देखता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते। तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
7: जी राजा रमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
4: अगर डिप्रेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर लें, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है। बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को, खेलना होता है। जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी, और दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर रहेगी।
7: जी राजनमन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है, तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने तक एक युवा खिलाड़ी को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
4: बहुत जरूरी है। पहले मुझे याद है फरज जी, मैं बहुत ही युवा था तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं, 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है, सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक मुहिम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो, पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2 लाख बच्चों के असेसमेंट्स किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द क्लू कि हम कौन से स्पोर्ट में और अच्छा कर सकते हैं। 7 या 8 खेल है जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है। वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं। लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिम्नास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का बला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं तो then we will find the solutions to all our problems.
7: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा, मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। तो श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े?
3: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का सेल्फ स्टडी का एक रेजिम बनाए और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी तो उनकी शिक्षा जो है वो कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती, उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक रेजिम बनाना चाहिए।
7: राजनमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है?
4: बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी है तो यू कैन ज्वाइन इन और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें और अपना जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें। वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
7: बिल्कुल, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में। और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
4: थैंक यू।
3: थैंक यू।
1: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज।
0: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। यह आकाशवाणी नागौर का आचरणीय चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां।

0: Day 7 of the Asian Games began on a bright note for the Indian contingent in Aichi Nagoya after Suruchi Singh and Kamaljeet claimed India's second gold medal, this one coming in the 10-meter air pistol mixed team event. Just minutes before this, the Indian trio of Neeraj Kumar, APS Tomar and Rudraksh Patil claimed a silver in the 50-meter 3P men's team. Chitale lost the mixed doubles semi-finals, thus winning India its first mixed doubles medal in table tennis at the Asian Games after 8 years. Shortly afterwards, Josh Architampa and V. Senthil Kumar assured themselves of a medal in the mixed doubles squash. The India men's kabaddi team thumped Thailand, while the women's side defeated Nepal to enter the finals, thus assuring India at least two more silver medals. Manpreet Kaur added to India's medal tally next, winning the bronze medal in women's shot put. Gulveer Singh also won a silver medal in the men's 10,000-meter event. Let's now hear some more detailed reports. First up from the shooting range, where India struck gold, here's Sakshi Manwal with all the details.
1: The best news at the start of the day today came from 10-meter air pistol mixed team event, where Indian shooters Kamaljeet and Suruchi Singh put up a brilliant show. In the final of the 10-meter air pistol mixed teams event, they finished with the gold medal, thus clinching India's second gold of the Asian Games 2026. Another good news in the world of shooting was from the men's 50-meter rifle three positions. Indian shooters delivered a strong performance in the men's 50-meter rifle three positions, securing the team's silver. Aishwarya Pratap Singh Tomar finished third with 589, while Neeraj Kumar stood fourth with 588. Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. India's combined score of 1,762 earned them the silver medal. China took gold with 1,766. In the 50-meter rifle three positions individual event, Aishwarya Pratap Singh Tomar had been eliminated from the men's 50-meter rifle three positions individual final, finishing fifth. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the eighth place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific event in the ongoing Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
0: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
2: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.7 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और प्रवीण कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा छठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
0: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
3: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
0: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
2: जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय जोशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग होंग टैंग की चुनौती होगी। ये जोशना का एशियाई खेलों में छठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम

0: में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2, 11-5, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4, 11-3, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11, 11-8, 11-3, 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे, जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
0: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
0: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12, 19-21, 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दिग्गज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elhamra Zord, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th respectively in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the

0: आरती मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी। प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया।
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
2: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी। निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही।
1: Indians were in action in canoe. Sakshi Manwal has all the details.
3: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished fifth in the men's kayak double 500 meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished third among four pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500 meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished fourth among five pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500 meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
2: भारत को आज तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांशु सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे। वैसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
1: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samaye Rabou, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
0: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जयसूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझो एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
1: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
3: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner, and they ultimately went on to win the series 2-0.
1: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
3: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेट लिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशु से आया है, और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक

अभी आप सुन रहे थे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:20 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। अब आपसे हमारी मुलाकात कल सुबह 8:51 पर हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।